0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா.

0: আকাশবাণী কলকাতা। পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমুদ্র অথবা নদীতে যারা মাছ ধরতে যান, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হয়েছে কোনো সতর্কবার্তা নেই। আকাশবাণী কলকাতা। একটু পরে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে সংবাদ, গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে সুভাষিত।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाघी ने कहा है कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि

0: प्रौद्योगिकी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वो दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यात्रा का लक्ष्य रसद, खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मेजर जनरल मोहसिन रिजाई ने कहा है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र अमरीकी नौसेना की नाकाबंदी वाली सीमा से शुरू होकर फारस की खाड़ी के कुछ हिस्सों तक फैलेगा। सात्विक साइराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने कल चीन के खिलाड़ियों को हराया। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला तथा इस जोड़ी का इस सत्र का दूसरा खिताब है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेनू कटारिया। Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured are being provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible, including their immediate dismissal. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology

चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। भारत फ्रांस मैत्री संबंधान प्रशंसयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस नगरे स्वामीनारायण मंदिरस्य उद्घाटनम अकरोत्। तेन राष्ट्रपति मैक्रों वर्यस्य योगदानं संस्मृत्य प्रोक्तं यत् एआई प्रौद्योगिक्याः अथ जलवायु संकट निवारणस्य दिशि उभौ देशौ जागतिक नेतृत्वं वहतः। मंदिर निर्माणं सांस्कृतिक सेतु रूपेण कार्यं करिष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।
1: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सहचित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनेन भ्रामक वार्तानां खंडनं कृतम्। यासु इसरो संस्थायाः निजीकरणस्य उत तस्याः भूमिकायाः न्यूनीकरणस्य संभावना व्यक्ता आसीत्। सामाजिक माध्यमेषु प्रसारिते एकस्मिन् संदेशे इसरो संस्थया स्पष्टीकृतं यत् न तु अस्याः निजीकरणं करिष्यते न च अस्याः महत्वं न्यूनं भविष्यति। संस्थया उक्तं यत् अंतरिक्षक्षेत्रे निजीक्षेत्रस्य सहभागितायाः मुख्य उद्देश्यं इसरो संस्थां भारतस्य भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमस्य अग्रिम जनाः अनुसंधानेषु अधिक प्रभावी रूपेण ध्यानं केन्द्रीकर्तुं सक्षमं करणम् अस्ति। यदा च उद्योग क्षेत्रं परिपक्व प्रौद्योगिकीनां क्षमतानां च विस्तारं करिष्यति। दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा रेखा गुप्ता इत्यनया नवदिल्ल्याः सत्यनिकेतन क्षेत्रे भवन पतनस्य घटनायाः मजिस्ट्रियल इति दंडाधिकारी अनुसंधानस्य आदेशः प्रदत्तः, तथा च भवनस्य स्वामिनः विरुद्धं FIR इति प्राथमिकी पंजीकर्तुं निर्देशोऽपि प्रदत्तः। मुख्यमंत्री कार्यालयः अवदत् यत् घटना स्थलस्य समीक्षायाः घटनायाः प्रारंभिक

0: मूल्यांकनस्य च अनन्तरम् अयं निर्णयः स्वीकृतः। सीएमओ कार्यालयः अवदत् यत् ये गभीरघटनायाः कृते उत्तरदायिनः इति ज्ञायते ते पूर्णतया उत्तरदातारः भविष्यन्ति, तथा च विध्याः कठोरतम उपबन्धैः व्यवहृताः भविष्यन्ति। अत्रांतरे गतरात्रौ अपरस्य मृतशरीरस्य प्राप्ते सति अस्यां घटनायां मृतकानां संख्या 6 यावत् वर्धिता अस्ति। स्थले अन्वेषणस्य उद्धारस्य च कार्यम् अनुवर्तत। यत् दलानि भग्नावशेषान् निष्कासयितुं कस्यापि निबद्धस्य जनस्य अन्वेषणार्थं च कार्यं कुर्वन्ति। एनडीआरएफ, अग्निशामक सेवा, देहली आरक्षकाः, अन्ये च विभागाः च भग्नावशेषान् निष्कासयितुं स्थले कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य श्रीवेङ्कटेश्वर महाविद्यालयः दुखद भवनपतनस्य कारणात् अद्य निरुद्धः भविष्यति। महाविद्यालयः अवदत् यत् अस्थायी उपायरूपेण सत्यनिकेतन क्षेत्रे निवसतां छात्राणां मध्ये अनेकेषां वेतन अतिथि निवासस्थानानाम् असुरक्षायाः भावस्य च परिसमाप्तेः अनन्तरं छात्राणां कृते स्वस्य वर्गेषु आवासं कल्पयति। भवनपतनस्य दृष्ट्या आर्यभट्ट महाविद्यालये अपि अद्य अध्यापनं स्थगितमस्ति। बिहार उत्तर प्रदेशयोः विभिन्नेषु भागेषु भीषण जलाप्लावनेन सामान्य जनजीवनं तीव्रतया प्रभावितम् अभवत्। बिहारे गंगा, गंडक, कोशी चेति प्रमुखाः नद्यः संकटस्तरम् अतीत्य प्रवहन्ति। पटनायां गंगा नद्याः जलस्तरः अनेकेषु घट्टेषु उच्चतम आप्लवं स्तरम् अतिक्रमति, येन अधोवर्ती क्षेत्रेषु उच्च सतर्कता वर्तते। उत्तरप्रदेशे 24 मण्डलानि आप्लावग्रस्तानि सन्ति, यत्र वृष्टिसम्बद्धासु घटनासु 5 जनाः स्वप्राणान् अयच्छन् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कहा कि प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा से लेकर अंतरिक्ष तथा जलवायु परिवर्तन तक दोनों देश नई गति और नई ऊर्जा के साथ कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई होगी। इस बीच कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। ये इमारत पेइंग गेस्ट

0: आवास के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कल दोपहर करीब 1:30 बजे इमारत ढहने के समय उसके बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध निर्माण वाली इमारतों को तत्काल सील किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश्वर कॉलेज आज इमारत हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल दुबई पहुंचे। वे संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। वे दुबई में आयोजित एनुअल इन्वेस्टमेंट मीटिंग कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों से मुलाकात कर मध्य प्रदेश को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य खनन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बाहर एक नया प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समन्वय के बिना इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज को ईरान की प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। भारत ने AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC Under-20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides also celebrating this year as the India-France Year of Innovation.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satyaniketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the site to clear the debris. Union Home Minister Amit Shah spoke to Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and Director General of NDRF and assessed the situation on the ground. Mr. Shah said the injured have been provided with all necessary medical assistance. The building was being used as a paying guest accommodation. A senior police officer said repair work was underway in the basement when the structure collapsed at around 1:30 p.m. yesterday. Delhi Mayor Pravesh Wahi has said that all illegal constructions having more than 4 floors will be sealed with immediate effect. He said strict action will also be taken against officials found responsible.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, इसे निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ओपेक प्लस समूह ने अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य को अपरिवर्तित रखने का फैसला किया और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 30-3 से हराकर 20 वर्ष बाद AFC Under-20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, AI और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इतिहास फ्रांस में भारतीय सैनिकों के बलिदानों का गवाह है। श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी नारायण मंदिर ने इस संभावना को भी एक नया आयाम दिया है।
1: भारत फ्रांस ज्वाइंट वेंचर्स की संभावनाओं पर बातें होती है। स्वामीनारायण मंदिर ने इस संभावना में भी एक नया आयाम जोड़ा है। ये मंदिर मेड इन इंडिया है और बिल्ट इन फ्रांस है। इसके काफी पत्थरों को भारत में तराशा गया है। भारत की प्राचीन प्रतिभा यहाँ फ्रांस में आधुनिक इंजीनियरिंग से आकर जुड़ चुकी है। पेरिस में इस भव्य मंदिर ने आकार लिया है, इसलिए मैं आशा करता हूँ ये मंदिर सदियों तक भारत और फ्रांस के बीच सहयोग और संभावनाओं का भी प्रतीक बनकर उभरेगा।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए।
2: जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। PG के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
0: मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा बताया गया कि

0: गंभीर घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसकी पूरी जवाबदेही तय की जाएगी और कानून के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल देर रात एक और शव मिलने के बाद हादसे में मृतकों की संख्या 6 हो गई है। घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान जारी है। NDRF, अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NDRF के महानिदेशक से बात कर घटनास्थल की स्थिति का जायजा लिया। श्री शाह ने कहा कि घायलों को सभी जरूरी चिकित्सा सहायता दी जा रही है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि 4 से अधिक मंजिल वाली सभी अवैध इमारतें तत्काल सील की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्री वेंकटेश कॉलेज आज इस हादसे के मद्देनजर बंद रहेगा। वहीं आर्यभट्ट कॉलेज ने भी आज शिक्षण कार्य स्थगित कर दिया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया की उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा कि ना तो उसका निजीकरण और ना ही उसका महत्व कम किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी का उद्देश्य अंतरिक्ष कार्यक्रम को सक्षम बनाना है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इसलिए इन सुधारों को निजीकरण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और क्षमता वृद्धि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसरो ने कहा कि परिपक्व और विस्तार योग्य तकनीकी क्षमताओं को भारतीय उद्योग द्वारा तेजी से विकसित किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर उत्पादन, व्यवसायीकरण, नवाचार और वैश्विक बाजारों तक पहुंच संभव होगी, जबकि इसरो के वैज्ञानिक और तकनीकी मानव संसाधन को उन्नत अनुसंधान, अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और जटिल राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलेगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है।
6: इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रतिनिधि भी बैठक में हिस्सा लेंगे। परिषद का यह मंच आपसी सहयोग को बढ़ाने और साझा हितों से जुड़े मामलों पर मिलकर आगे बढ़ने का अवसर देता है। बैठक में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल संयुक्त अरब अमीरात के 3 दिन की यात्रा पर दुबई पहुंचे। वे दुबई में वार्षिक निवेश बैठक कांग्रेस में भाग लेंगे और निवेशकों के समक्ष मध्य प्रदेश को एक आकर्षक निवेश स्थल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। श्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर कई देशों ने अपना व्यापार बढ़ाया है।
7: प्रदेश से जुड़ करके कई सारे देशों ने भी अब अपना व्यापार व्यवसाय बढ़ाया है और यही कारण है कि पिछले साल ही हमारा 76,000 करोड़ का निर्यात मध्य प्रदेश से हुआ। ऐसे में हम अपने इस व्यापार व्यवसाय के साथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, सभी के लिए समृद्धि और

0: पर द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम दोनों कटिबद्ध हैं।
1: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो यात्रियों के पास से 484 चांदी के सिक्के और एक सोने का सिक्का जब्त किया है। इनमें 134 चांदी के सिक्के पुरातात्विक महत्व के हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 के अंतर्गत सिक्कों को जब्त कर लिया गया है। मामले में आगे की जाँच जारी है। ओपेक प्लस समूह के सात प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। इसके साथ ही वर्ष 2023 में की गई प्रतिदिन करीब 16,50,000 बैरल की स्वैच्छिक उत्पादन कटौती को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई। यह बैठक ईरान से जुड़े संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास जारी व्यवधानों सहित तेल निर्यात में रुकावटों की पृष्ठभूमि में हुई। इन व्यवधानों के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति और कीमतों पर ओपेक प्लस के उत्पादन संबंधी फैसलों का असर सीमित रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: भारत ने एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्षों में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। एएफसी अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में दो दिन के भव्य लोक महोत्सव का समापन कल शाम रामबन जिले में हुआ। महोत्सव में पहाड़ी समुदाय की समृद्ध लोक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और जातीय पहचान का प्रदर्शन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 0112331041, 0112371717 और 0112331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद सरफिरोजी। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान को दिया है नक्सलवाद खत्म किया, देश को अब ड्रग्स मुक्त बनाएंगे। ड्रग्स मुक्त युवाओं से 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करने का आह्वान। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्रालय के इस कथन को सुर्खी बनाया है पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, नक्शे में यही दिखे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं। हिंदुस्तान के अनुसार भारत ने बाल विवाह और जबरन विवाह रोकने के लिए 27 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी समर्थन किया। दैनिक भास्कर ने अपने आर्थिक पन्ने पर लिखा है महिलाओं के काम पर जाने से घरों में बराबरी बढ़ी। एक शोध के अनुसार महिलाओं के नौकरी करने का असर सिर्फ परिवार की आय पर नहीं पड़ता, घर में उनकी स्थिति भी बदलती है। 2025 की एक श्रम सेवा रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 में से 39 महिलाएं काम कर रही हैं। दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप से 4,00,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, पंजाब केसरी की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति की घोषणा की। दैनिक भास्कर लिखता है नए विचारों और उद्यमशीलता को गति देने के लिए सरकार की बड़ी पहल, स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 400 करोड़ का बजट। कई अखबारों ने अपने खेल पृष्ठ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पहली चाइना बैडमिंटन टूर्नामेंट खिताबी जीत को सचित्र प्रकाशित किया है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर आधारित होने के कारण खास बताया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

0: ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। इसरो ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य एक व्यापक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के पणजी में आज पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और भारत ने ताशकंद में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India-France strategic partnership is special because it rests upon strong foundation of long-standing cultural and political connections. Delhi Chief Minister Rekha Gupta orders magisterial inquiry into Satya Niketan building collapse incident. FIR lodged against building owner. ISRO says space sector reforms are aimed at creating larger, stronger and globally competitive Indian space ecosystem, and it should be seen as ecosystem expansion and capability multiplication rather than privatization. Union Home Minister Amit Shah to chair 20th meeting of the Western Zonal Council at Panaji in Goa today. OPEC plus countries decide to keep oil production target for October unchanged. And in football, India qualify for AFC Under 20 Asian Cup after 20 years following 3-0 victory over Bangladesh in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past several years, the relationship between India and France has reached new heights. He said together with President Macron, both countries are building a special global strategic partnership. Speaking during inauguration of the Swami Narayan Hindu Mandir in Paris through video conferencing, Mr. Modi said from technology, AI and defense to space and climate action, both nations are moving forward together with new momentum and renewed energy. He said both sides are also celebrating this year as the India-France Year of Innovation. The Prime Minister said the India-France strategic partnership is special because it rests upon the strong foundation of the long-standing cultural and political connections.
2: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: He said history bears witness to the sacrifices of the Indian soldiers in France, a history that continues to live in the collective memory and hearts. Mr. Modi said those interested in languages also know the important role French scholars have played in promoting and popularizing Sanskrit. He added that now, through the magnificent BAPS Swaminarayanan Temple, a new chapter has been added to the India-France deep cultural relationship.
2: BAPS के माध्यम से जब अलग अलग देशों में मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ भारत के प्राचीन विचार और मानवीय मूल्य भी साथ साथ ही जाते हैं। और भारत का विचार कहता है समानम मनः सह चित्तमेषां, अर्थात हमारे मन समान हो, हमारे हृदय साथ जुड़े। इसलिए आज जब फ्रांस में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ये फ्रांस की विविधता को तो समृद्ध करेगा ही, इससे भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को भी ऊर्जा मिलेगी।
1: Delhi Chief Minister Rekha Gupta has ordered a magisterial inquiry into the building collapse incident in Satya Niketan area of New Delhi and directed registration of an FIR against the building owner. The Chief Minister's office said the decision was taken following an on-site review and a preliminary assessment of the incident. The CMO said those found responsible for the grave incident will be held fully accountable and dealt with under the strictest provisions of law. Death toll in the incident has risen to 6 following the recovery of one more body late last night. Search and rescue operations continued at the site as teams worked to clear the debris and look for any trapped person. Teams from the NDRF, Fire Service, Delhi Police and other agencies are working at the

स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 7 तारीख के सुबह 9:10 और यही वक्त होता है जब आप सुनते हैं कार्यक्रम रसधारा। मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आज पॉपी है आपके साथ और बहुत सारी मजेदार बातें किस्से तो रहेंगी, साथ में हमारा ये जो म्यूजिकल सफर है वो चलता रहेगा 10 बजे तक। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जावेद अली और सुनिधि चौहान के मधुर आवाज से, और ये जो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ कुछ खास बात तो है। तो आइए सुनते हैं फिल्म दावत इश्क से टाइटल सॉन्ग।

दावत इश्क से आपने सुना ये टाइटल सॉन्ग। वैसे जब बात हो रही है दावत की तो कोई बात तो है जो आज का हमारा टॉपिक वो खाने से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम खाने के बारे में ही बात करेंगे और क्या बात करेंगे उसको बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आजकल हमारा जो पैलेट जो तैयार होता है, थाली जिसे हम थाली कहते हैं, जो थाली में जो सज के पारंपरिक खाना आता था अब शायद वो दिखने को नहीं मिलता है। उसकी जगह ले लिया गया है चीज बर्स्ट पिज्जा, व्हाइट सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, क्रिस्पी फ्राइड चिकन, लोडेड फ्राइज, बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज, टाकोज, नाचोज, बरिटोज, हक्का नूडल्स, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, रेमन बोल, सुशी कॉर्न डॉग, हालांकि हॉट डॉग भी है, मुझे समझ में नहीं आता है उस हॉट डॉग, मतलब अगर उसका हम ट्रांसलेट करें वो गरम कुत्ता उसे क्यों कहा जाता है मुझे नहीं मालूम, बट यस हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन हमारा जो खाने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी बदल चुका है और जो हम पारंपरिक खाना खाते थे उससे मानो कोसों दूर जाते जा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या बैड इफेक्ट है वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। सुनते रहिए आज का ये कार्यक्रम रसधारा पॉपी के साथ और काफ़ी बातें होंगी। साथ में हमारा जो म्यूजिकल सफ़र है यानी कि संगीत में जो हमारी जर्नी होती है उसको कंटिन्यू करते हुए सुनाते हैं आपको किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, जो गीत में जिस चीज की बातें हो रही हैं, जिस चीज का वर्णन दिया जा रहा है वो खाने के अंत में गाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे कि मैं क्या चीज की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं डॉन फिल्म के खई के पान बनारस वाले गीत की बात कर रही हूँ। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत गीत।

पर ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म होई जा।

0: ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: दोस्तों पान तो तब खाया जाता था जब हम खाना भी देसी खाना खाते थे। जी हाँ, जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी दही खीर रसगुल्ले। लेकिन आजकल हमारा जो प्लेट है वो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में खाने का तरीका ही बदल गया है। पहले घर का बना खाना जो कि पोषक खाना माना जाता था, अब उसकी जगह ले लिया है बर्गर पिज्जा चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स और जो बहुत ही भयानक है वो है इंस्टेंट नूडल। ये जो इंस्टेंट बनने का जो तरीका है, ये जो सिस्टम बन चुका है, इंस्टेंट कॉफी इंस्टेंट चाय सब कुछ इंस्टेंट इंस्टेंट सॉल्यूशन तक तो ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टेंट जो सीधा हमारे पेट को जाता है ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये स्वाद में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सेहत के लिए बेहद हानिकारक हैं।

इसलिए आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि जंक फूड से हम हेल्दी फूड की ओर रुख करें, और यही आज का हमारा टॉपिक है, जंक फूड से हेल्दी फूड की ओर।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। और आज का जो टॉपिक है वो है जंक फूड से लेकर रुक करते हैं सेहतमंद फूड की तरफ। जी हाँ, जंक फूड को बाय, पारंपरिक खाने को हाय। वैसे आजकल का सीन कुछ ऐसा है, माँ चिल्लाएगी रोटी खा ले, हम बोलेंगे मम्मी पिज्जा ऑर्डर कर दो। जीभ को तो मजा आ गया है पर पेट बोल रहा है भाई ये क्या कर दिया, हमारा पता बर्गर की तरफ नहीं जाता है, जबकि सेहत का रास्ता तो सीधा हमारी रसोई से आया है। आपको बताना चाहेंगे कि जंक फूड मतलब ये सोशल साइट वाले खाना जिसमें फोटो तो होता है बड़ा मस्त, जी हाँ, पर अंदर से ये खाना जो है ये बिल्कुल बिल्कुल खोखला है। बर्गर, फ्राइज, मोमोज, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक, इनमें है क्या? सिर्फ मैदा, तेल, नमक और चीनी का ओवरडोज। और ये हो क्या रहा है, मतलब ये जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, ये खाना हम खा रहे हैं, ये खाना हमें बिल्कुल स्लो बना रहा है, रात भर नींद नहीं आती है, सुबह देर तक सोते हैं। अच्छा, ये सब खाते ही कुछ नींद भी आ जाती है तो पढ़ते पढ़ते पढ़ने में दिल नहीं लगता, पढ़ने में बोरियत आ जाती है। और महीने भर में आपका जो आउटफिट्स है, जीन्स हो या जो कुछ भी हो, वो ड्रेसेस बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। असली हेल्दी फूड, कोई भी फूड जो है वो विदेशों से नहीं आया है, वो तो हमारे पारंपरिक रसोई में जो हमारी दादी, हमारी नानी, चाची, मामी बनाती थी, वो है हमारा सही खाना, पोषण वाला खाना। अब देसी खाने में जो जादू है ना, वो मैं क्या बताऊं। अब आप खुद ही देखिए, बिहार का सत्तू और लिट्टी, लिट्टी चोखा प्रोटीन का बॉम्ब है। हम प्रोटीन पाउडर्स खा रहे हैं आजकल, लेकिन अगर आपको वाकई प्रोटीन चाहिए तो आप लिट्टी चोखा खाइए, प्रोटीन का बॉम्ब और जंक फूड का बाप है। जी हाँ, सारे जो जंक फूड्स है उसके सामने फेल। वही बंगाल का यानी कि हमारे बांग्ला का पांता भात और दाल, ठंडा, हल्का, पेट के लिए बिल्कुल, मतलब वो इसे इफेक्ट देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुजरात का ढोकला, खिचड़ी, हल्का फुल्का, मतलब ये जो खाने हैं, ये खाना आप खा के आपको कभी भी लगेगा नहीं कि भारी भारी, ब्लोटिंग, ये सब कुछ नहीं होगा। साउथ का इडली, सांबर, डोसा, चटनी फर्मेंटेड है। जी हाँ, इसे फर्मेंटेशन के बाद बनाया जाता है, मतलब पेट खुश, मूड खुश और आपका जो गट्स है, जी हाँ, वो गट वाली जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर। और अगर बहुत ज़्यादा आपको वो कहते हैं ना कुछ स्पाइसी, कुछ जीभ जो हमारा कभी कभी चटोरा बन जाता है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मिलता है सुकून पिज्ज़ा और चीज़ से नहीं, बल्कि सीधी सादी दही और अचार और रोटी सब्जी, ये सब जो खाना है, ये खाना खा के न मन खुश होता है बल्कि आपका पेट आपसे थैंक्स कहता, आपको धन्यवाद देता, आपको शुक्रिया कहता है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम वापस मुड़े अपने पारंपरिक खाना के ऊपर, खाना की दिशा के ऊपर। फिलहाल हमारा ये कार्यक्रम आज इसी बात पर है कि हम अब रुख चेंज करें, जो एक बदलाव बीच में आ चुका है, एक बार फिर से उस बदलाव में बदलाव लाएं और जंक फूड्स को अपने आप से दूर रखें, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, इंतहा हो गई है इंतजार की।

दोस्तों, भले ही ये गीत अनजान ने फिल्म शराबी के लिए महबूबा को ध्यान में रखते हुए लिखा था, लेकिन मेरा ये मानना है कि वाकई इंतहा हो गई और अब इंतजार नहीं किया जा सकता है और इसलिए हमें अपना रुख बदलना पड़ेगा। हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां हमारा जो सफर है बस फास्ट फूड का सफर यहीं तक का, और अब जो हमारा सफर होगा वो ट्रेडिशनल फूड, पारंपरिक फूड की ओर होना चाहिए। दरअसल ये हम जो जंक फूड, फास्ट फूड कहते हैं, इसमें है क्या? ये वो कहते हैं ना, जीभ को इतना पसंद, दिल को इतना पसंद, मन को पसंद, वाकई है क्या? होता क्या है इसमें? दरअसल ये जो खाना है इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं और पोषक तत्व जो है वो बहुत कम, और इसी कारण इसमें तेल, नमक, चीनी, मैदे की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है, और कहीं कहीं कुछ ऐसे चीजों को भी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अजीनामोटो। ये एक किस्म का सॉल्ट है जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। अब सेहत से खिलवाड़ तो आप कर नहीं सकते। इन खानों की वजह से देखा जा रहा है कि मोटापा यानी कि ओबेसिटीज, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का जो खतरा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बच्चों में एकाग्रता, मतलब वो कहते हैं ना माइंडफुलनेस, वो चीज कमी हो रही है, उनमें याददाश्त में कमजोरी आ रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं, डाइजेशन पावर यानी कि पाचन तंत्र जो है हमारा वो खराब होता जा रहा है, थकान आ रही है, सुस्ती बनी रहती है, और सबसे बड़ी जो दुश्मनी निभा रहे हैं ये फास्ट फूड हमारे साथ, वो है हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो बीमारियों को लड़ने की जो क्षमता है वो खत्म सी होती जा रही है। और चाहिए हमें ऐसे में कि हम चेंज करें, हम वही पुरानी चीजों को अपने थाली में एक बार फिर से सजाएं।

सब्जियों से, फल से, मोटे अनाज से, दूध, दही, अंडे और ताज़े ताज़े फूड्स, साथ ही ड्राई फ्रूट्स, ये जो है ये आपके शरीर को विटामिन, मिनरल और एनर्जी देता है। दिमाग तेज और तंदुरुस्त बनाता है, दिल में खुशी होती है। वो डिप्रेशन वाली जो बीमारी है, देखिए आज से मतलब 10-15 साल पहले डिप्रेशन लोगों को नहीं होता था, लेकिन ये जो बीमारी है इसमें भी ये बीमारी को बढ़ावा देती है यही फास्ट फूड के जो इतने सारे वैरायटीज हैं। और सही पूछिए तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव हम एक दिन में नहीं लाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसको हम बताएंगे आपको। लेकिन पहले आइए एक और खूबसूरत गीत, हंसते हंसते खूबसूरत सा गीत, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलो हर्ट्ज पर आज हम वो बातें कर रहे हैं जो हमारी सेहत को बुरी लगती है। जी हाँ, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन उसके लिए हमारा जो रवैया है, हमारे जो आदतें हैं, उन्हें हमें चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि बदलाव एक दिन में संभव नहीं है, छोटे छोटे कदमों से शुरू करना होगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक की जगह नींबू पानी या नारियल पानी, चिप्स की जगह भुने चने या मखाना। वैसे आपको बता दूं कि मखाना खाने का जो रिवाज है पहले से बहुत बढ़ गया है। जी हाँ, सबसे ज्यादा मखाना बिहार में इसकी पैदाइशी होती है, इसकी जो फसल होती है। और आपको बताना चाहेंगे कि मखाना इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इसे खाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोशिश करें हफ्ते में 5 दिन घर का खाना खाएं, टिफिन में पराठा सब्जी पोहा उपमा ले जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भूख लगने पर तुरंत बाजार का खाना, वो है ना वो जो हमेशा खींचता है आपको, रोल्स, बर्गर, पिज्जा, हॉट डॉग, ये सबसे दूरी बनाएं और उसके जगह अपने साथ फ्रूट्स यानी कि फल लेकर जाएं, घर का स्नैक्स रखें। और सिर्फ इतना ही नहीं, मौसम के फल और सब्जियां अगर आप खाते हैं तो नहीं, ये सस्ते होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं और सबसे ज्यादा पोषण आपको मिलता है। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप छोटे छोटे बदलाव करके अपने सेहत को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं और तंदुरुस्त बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मान लीजिए आपको बर्गर चाहिए तो घर पर टिक्की बनाइए, आलू की जगह बेसन और हरी सब्जी की टिक्की, मैदा वाले बन की जगह घर की रोटी, बन गया आपका देसी बर्गर। अच्छा, और खास बात, एक बात को आपको ध्यान देना है, वो ये कि नो पैकेट चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। जी हाँ, कोई भी पैकेट वाला चीज आप नहीं खाएंगे। देखना, ये आपके लिए दो तरफ से फायदे देते हैं। जी हाँ, एक तो पॉकेट मनी आपका, मतलब पॉकेट पर कमजोर पड़ेगा और साथ ही आपके चेहरे पे जो वो पिंपल्स होते हैं ना, वो पिंपल्स भी बिल्कुल गायब। और एक खास बात कि अपनी थाली को, जी हाँ, हम होली और दिवाली साल में एक बार मनाते हैं ना, आप रोज मनाइए होली, अपने थाली को होली जैसा बनाइए। हरी चटनी, लाल टमाटर, पीली दाल, सफेद दही, जितना ज्यादा रंग उतनी ज्यादा सेहत। मेरा तो भाई ये मानना है कि एक दिन दादी या माँ से पूछो कि सत्तू कैसे घोलते हैं, आम का अचार कैसे बनाते हैं, और ये सारे के सारे मास्टर शेफ से भी बड़े क्लासेस आपको दे देंगी। तो दिमाग में ये बात रखिए कि हमें अपना रुख बदलना है, हमें टाटा कहना है। जी हाँ, हमें टाटा कहना है जंक फूड्स को और अपनाना है अपने पारंपरिक फूड को। वेलकम बैक टू पारंपरिक फूड, उनका एक बार फिर से हमारी जिंदगी में स्वागत है। देखिएगा, जिंदगी में पिज्जा हो तो आटा जैसा रहेगा, पर मजा तो है हाथ की खिचड़ी और दाल की। जी हाँ, और वो खिचड़ी में जो हम घी डालकर खाने के बाद, मतलब खाने में वो जो परोसा जाता है घी, वो किसी भी आपको फास्ट फूड चेन में नहीं मिलेगी, लेकिन फास्ट फूड चेन से भी बहुत बहुत बहुत ज्यादा है। तो एक बार फिर वही कहूंगी जाते जाते कि से बाय टू जंक फूड, उनसे हम रुखसत लेते हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर अपने पारंपरिक खाने की ओर। और जैसा कि मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई और इसके साथ ही वक्त कह रहा है कि अब मुझे रुख करना है FM रेनबो की ओर। तो फिलहाल संचयिता से पॉपी आप सबसे कहती है नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। फ्रांस के पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी विशेष है क्योंकि ये दीर्घकालिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों की मजबूत नींव पर टिकी है।
1: बीते वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। मेरे मित्र प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर दोनों देश एक स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे। टेक्नोलॉजी, एआई और डिफेंस से लेकर स्पेस और क्लाइमेट एक्शन तक हम एक नई गति और नई ऊर्जा के साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि आज योग भारत और फ्रांस के बीच आपसी जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों भारत फ्रांस संयुक्त उद्यमों की संभावनाओं पर काफी चर्चा हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इमारत के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार ये फैसला घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने और हादसे के प्रारंभिक आकलन के बाद लिया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने बताया कि हादसे में घायल हुए 11 मरीजों को चिकित्सा के लिए लाया गया है। इन 11 मरीजों में से 5 को मृत अवस्था में ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जबकि एक अन्य घायल की बाद में मृत्यु हो गई। 3 घायलों का इलाज जारी है। एक घायल की सर्जरी की गई, जबकि एक अन्य को निगरानी में रखने के बाद छुट्टी दे दी गई। इस बीच आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि आरटीआर और बिनोती जुआरेज मार्ग से आने वाले मार्गों पर भी यातायात प्रभावित होगा। दिल्ली यातायात पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि यदि संभव हो तो इन मार्गों से बचें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा आयोजित की जा रही है और इसकी मेजबानी गोवा सरकार कर रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। श्री शाह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, जबकि गोवा के मुख्यमंत्री इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटेल आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्री बेटेल आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ओपेक समूह प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में वैश्विक तेल बाजार की स्थिति और संभावनाओं की समीक्षा की गई। इन देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। ओपेक प्लस ने सितंबर में प्रतिदिन करीब 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मीडिया के उन अटकलों और गलत सूचनाओं पर स्पष्टीकरण जारी किया है जिनमें इसरो के निजीकरण या उसकी भूमिका कम करने के प्रयासों की बात कही गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इसरो ने कहा, न तो उसका निजीकरण और न ही उसका महत्व कम किया जाएगा।

मौसम विभाग ने आज बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज प्रसार भारती का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी कोलकाता का संचित चैनल है। साथ ही साथ शामिल कराम आप किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संतेटा टाइप करके इस चैनल को बराह रास्त समाप्त कर सकते हैं। शामिल कराम इस वक्त हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10:15:45 हो रहे हैं। तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, तुम्हारी अंजुमन से उठ के दीवाने कहाँ जाते, जो वाबस्ता हुआ तुमसे वो अफसाने कहाँ जाते। जी हाँ सामिन कराम, हमारा दिल भी आपकी मोहब्बत के कई अफसानों से वाबस्ता है। यही वजह है कि रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त आफताब आलम। आप तमामी सामिन को आफताब आलम का पुरखलूस आदाब। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो आइए दोस्तों, आईने की इसी सदाकत के साथ रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन की इब्तदा आईना से करते हैं। साबिन कराम, आज दुनियागीर पैमाने पर पुलिस ताउन का बैन अल्लामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 7 सितंबर को आलमी सतह पर मनाया जाता है, जिसका मकसद माशरे के कमजोर तबकात को जराइम से महफूज रखना और पुलिस के आमाल में आवाम के एतमाद और कानूनी हैसियत को मुस्तहकम व पायदार बनाना है। दोस्तों, पुलिस ताउन का बैन अल-अक़वामी दिन अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 16 दिसंबर 2022 की करारदाद 77/241 के जरिया कायम किया था और पहली बार यह दिन 7 सितंबर 2023 में मनाया गया। 7 सितंबर को इंटरपोल के पेशरव इदारे के कायम की यादगार की तारीख है। सामिन कराम, पुलिस ताउन का बैन अल-अक़वामी दिन हर साल एक मरकजी ख्याल के तहत मनाया जाता है और आज ये दिन कमजोरी के खिलाफ तहफ्फुज़, पुलिस में एतमाद और कानूनी हैसियत की तामीर थीम के तहत मनाया जा रहा है। इस मौजू का मकसद कमजोर तबकात को जराइम से महफूज रखते हुए पुलिस के कामों में अवामी एतमाद और कानूनी हैसियत को मजबूत बनाना है, जो कि तनाजात, नकल मकानी और आलमी चैलेंजेस के पस मंजर में खासा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, ये दिन दुनिया भर में कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को तस्लीम करता है, बैन अल-अक़वामी पैमाने पर पुलिस ताउन को फरोग देता है ताकि तंजीम शुदा जराइम, दहशतगर्दी, साइबर क्राइम और दूसरे सरहद के पार खतरात से निपटा जा सके। साथ ही साथ अक्वामे मुत्तहिदा की इमा पर मनाए जाने वाला पुलिस ताउन का ये बैन अल-अक़वामी दिन अक्वामे मुत्तहिदा, इंटरपोल और इलाकाई पुलिस तंजीमों के दरमियान शराकत दारियों को भी फरोग देता है। सामिन कराम, आज रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के आईना का दूसरा मौजू है नीले आसमान के लिए साफ हवा का बैन अल-अक़वामी दिन। दोस्तों, आज दुनिया भर में नीले आसमान के लिए साफ हवा का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 7 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का ऐलान अक़वामे मुत्तहिदा ने 19 दिसंबर 2019 को करारदाद 74/212 के जरिए किया था और इस दिन के मनाने की इब्तदा 7 सितंबर 2020 में हुई थी। सामिन कराम, नीले आसमान के लिए साफ हवा का आलमी दिन मनाने का मकसद हवा के मेयार में बेहतरी लाना, फिजाई आलूदगी में कमी बपा करना और बैन अल-अक़वामी ताउन को इस्तेहकाम

मत बख्शना है। असरे हाजिर में फिजाई आलूदगी दुनिया के तमाम इंसानों की सेहत के लिए सबसे बड़ा माहौलियाती खतरा है और इससे मुतासिर होकर दुनिया भर में लाखों अफराद लुकमाए अजल बनती हैं। दोस्तों, फिजाई आलूदगी के नाकिस असरात के शिकार ज्यादा बच्चे, मुअम्मर अफराद और ख्वातीन होती हैं। जबकि साफ सुथरी हवा, बेहतर सेहत, माशी तरक्की, पैदावार में इजाफा और माहौल बेहतर बनाने के हवाले से लाजमी है। ये मौसमियाती तब्दीली से निमटने में भी इंतहाई मुआविन वो मददगार साबित होती है। सामिन कराम, नीले आसमान के लिए साफ हवा का बैनुल अक्वामी दिन मौसमियाती अमल और साफ हवा से मुतल्लिक इक़दामात को मजबूत बनाता है, इक्तसादी और सेहत के फवायद को उजागर करता है और साफ हवा के साथ इंसानी जिंदगी की हिफ्स बका को फरोग देता है। सामिन कराम, आज रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन में आईना का आखिरी और तीसरा मौजू है दुनिया भर में डचिन बेदारी का आलमी दिन मनाया जाना। सामिन कराम, आज दुनियागीर सतह पर डचिन बेदारी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 7 सितंबर को ही मनाया जाता है। ये दिन डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बेक्रोसेकुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में दुनिया भर में आगाही फैलाने के लिए मखसूस है। सामिन, डचिन एक नायाब जीनियाती बीमारी है जो खसूसी तौर पर लड़कों को मुतासिर करती है। दुनियागीर सतह पर हर 5,000 नौजायदा बच्चों में से एक इस बीमारी का शिकार होता है। इसमें डिस्ट्रोफिन नामी प्रोटीन की कमी पापा होती है, जिसकी वजह से उनके पट्टे बतदरीज कमजोर होने लगते हैं, इसलिए चलना फिरना भी उनके लिए दुश्वार हो जाता है। फिर सांस लेने में दुश्वारियां पेश आने लगती हैं और दिल के मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। दोस्तों, असरे हाजिर में इस बीमारी का मुकम्मल इलाज तो मौजूद नहीं, लेकिन बेहतर देखभाल से मरीज को 30 वर्षों तक या इससे ज्यादा भी दिनों तक बचाया जा सकता है। डचिन बेदारी के आलमी दिन के मौके पर आलमी पैमाने पर लोगों और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से लाल रंग की रोशनियां इमारतों में लगाई जाती हैं, सुर्ख गुब्बारे उड़ाए जाते हैं, बेदारी मुहिम चलाई जाती है और खानदानों की कहानियां लोगों में आम की जाती है। सामिन कराम, डचिन बेदारी का आलमी दिन भी हर साल एक थीम के तहत मनाया जाता है और इम साल इस दिन के मनाने का थीम है रसाई जिंदगी बदलती है, जिससे मुराद यह है कि दुरुस्त तशीक, मियारी देखभाल और मुआमिन खिदमात तक रसाई हर मुतासिर फर्द के लिए मुमकिन होनी चाहिए। सामिन कराम, डचिन बेदारी के आलमी दिन न सिर्फ बीमारी के बारे में लोगों में आगही फैलाता है, बल्कि मुतासिर बच्चों, नौजवानों और इनके खानदान के अफराद की जिद्दोजहद को भी उजागर करता है और तहकीक व मरीज की बेहतर देखभाल की हिमायत करता है। सामिन कराम, आज अभी आप रोजाना उर्दू प्रोग्राम में आईना के तहत तीन मौजूदात के मुतल्लिक हमारी गुफ्तगु समाप्त फरमा रहे थे। वो दूर ही से हमें देख ले यही है बहुत, वो दूर ही से हमें देख ले यही है बहुत, मगर कबूल हमारा सलाम हो जाए

देनी पड़ती है। सामिन कराम, इसी तरह बेदी का अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में भी बच्चों के किरदार के ताल्लुक से खासा अहमियत दिखाया गया है। यह अफसाना बच्चों के किरदार के मुतल्लिक खासा अहमियत का हामिल अफसाना है। इस अफसाने में बेदी ने कुंदन, पाशी, दुलारी, मुन्नी नामी बच्चों का किरदार पेश किया है, जो आपस में भाई बहन होते हैं और जो अपनी मां की मौत के बाद अपनी परवरिश फरदाक के ताल्लुक से अपने बड़े भाई मदन की अहलिया इंदु पर मुनहसिर होते हैं। इस अफसाने में बेदी ने बच्चों को खानदानी जिम्मेदारियों और रिश्तों की पेचीदियों का शिकार होने की बेहतरीन मंजरकशी की है। दोस्तों, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में बच्चों के किरदार के ताल्लुक से जिंदगी के नशीब व फराज और इक्तसादी मुश्किलात को भी खूब उजागर किया है। उन्होंने अपने अफसाना गर्म कोट में बच्चों को इक्तसादी मुश्किलात का हिस्सा बनाया है, क्योंकि इस अफसाने में उन्होंने माली परेशानी के सबब कड़ाके की सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े की शदीद कमी का शिकार बनाया है और घर के अखराजात का बोझ बिलवास्ता तौर पर बच्चों पर ही डाला है। सामिन कराम, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में माशरती और घरेलू दोनों सतहों के हकायक का नहायत ही एहसान अंदाज में तर्जुमानी करते हैं। गरचे हमारा मौजू राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में बच्चों का किरदार है, लिहाजा मस्कूरा मौजू का अहाता ही हमारी गुफ्तगू का नसबुल ऐन है। दोस्तों, बेदी ने अपनी कहानियों में बच्चों के किरदार को मोहब्बत का मरकज और बोझ दोनों ही तौर पर पेश किया है। उनके अफसानों में औरत, चाहे वो माँ हो या बहू, बच्चों के लिए बेशुमार कुर्बानियां पेश करती हैं। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा ना होगा कि अपना सब कुछ वो बच्चों की खुशियों पर कुर्बान कर देती है। और बेदी का ये फनी कमाल ही है कि वो औरत की इस कुर्बानी को हसासियत के साथ पेश करते हैं। सामिन कराम, उनके अफसानों में खानदानी बिगाड़, रिश्तों में तोड़फोड़, खवातीन की मुश्किलात और बच्चों की परवरिश पर दाख्त में हायल दुश्वारियां इक्तसादी बहरान की ही देन हुआ करते हैं। खुसूसी तौर पर वो बच्चों को समाजी और इक्तसादी मुश्किलात का ज्यादा शिकार बनाते हैं। सामिन कराम, अफसाना क्वारंटीन में उन्होंने प्लेग के वबाई दौर में एक डेढ़ साल बच्चे का किरदार पेश किया है, जिसका वालिद उसे और उसकी माँ जो बीमार होती है दोनों को छोड़कर क्वारंटाइन में खिदमत खल के लिए निकल जाता है। और इस तरह इस अफसाने में भी बच्चा कुर्बानी और खौफ का निशाना बनता है। इस अफसाने में उन्होंने प्लेग की वबा के बहरान को शिद्दत आमेज और खतरनाक अंदाज में पेश किया है। सामिन कराम, राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने कुछ अफसानों में गुर्बत के बाईस बच्चों को पेट भरने के लिए वालदेन की सख्त जद्दोजहद और सड़े गड़े खानों का एहतमाम भी नहायत ही दर्द का कर्ब के साथ पेश किया है। अलगरज सामिन कराम, राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू अदब के कैसे बाकमाल व बाशऊर अफसाना निगार हैं, जिन्होंने अपने अफसानों में बच्चों के किरदार को खासा मकाम अता किया है। और उनके अफसानों में बच्चे माशरती नाइंसाफी और माशी व खानदानी मुश्किलात का शदीद तौर शिकार वो मुतासिर नजर आते हैं। सामिन कराम, अभी आप रोजाना उर्दू प्रोग्राम में मंजरनामा के तहत राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों में बच्चों का किरदार के मौसू पर हमारी गुफ्तगू समाप्त फरमा रहे थे। सामिन कराम, आप अपने दोस्त आफताब आलम के साथ रोजाना उर्दू प्रोग्राम अंजुमन आकाशवाणी कोलकाता के संचिता चैनल पर समाप्त फरमा रहे हैं। दोस्तों, प्यार करने वाले अपने महबूब पे जान लुटाते हैं, उसे पाने की खातिर हर मुश्किल और परेशानी का सामना कर लेते हैं, और जब तमाम तर मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना करने के बाद उनका महबूब उन्हें मयसर आ जाता है तो उनके दिलों से बेसाख्ता यही आवाजें निकलती हैं।

दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे कि आप सुन रहे हैं मीडियो वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर दैनिक पत्रिका कार्यक्रम सुरभि, और मैं हूं पॉपी आपके साथ। और आज बता दें कि आज 7 सितंबर है और आज ही के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन मनाया जाता है। वैसे आप सभी के मन में ये उत्सुकता होगी कि ये है क्या। आपको बताएं कि आज ही के दिन यूनाइटेड नेशंस ने हर साल 7 सितंबर को ये दिन मनाने का फैसला किया था। इसकी शुरुआत साल 2023 से हुई थी। आज ही के दिन सन 1923 में इंटरपोल के पुराने रूप यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना हुई थी, इसलिए इस तारीख को पुलिस सहयोग का प्रतीक माना जाता है। इसका मकसद ये है कि विभिन्न देशों की जो पुलिस है उनके बीच कोऑपरेशन बढ़ाना, सहयोग बढ़ाना, बॉर्डर पार होने वाले अपराधों जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, इन सब को रोकना, एक दूसरे को ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयर करके मदद करना। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार हर साल लगभग 95,000 हत्याएं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से होती हैं। इसलिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। उनका कहना है, बाय वर्किंग टुगेदर अक्रॉस बॉर्डर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कैन बेटर सपोर्ट सर्वाइवर्स, एप्रिहेंड परपेट्रेटर्स, और यही संदेश दिया जाता है। आज इस दिन पर दुनिया भर में 7,700 से भी ज्यादा यूएन पुलिस कर्मचारी 14 पीस मिशंस में काम कर रहे हैं ताकि कमजोर कानून वाले देशों में भी शांति बनी रहे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो क्राइम अब एक देश तक सीमित नहीं रहा, तो पुलिस को भी टीम बनकर काम करना पड़ता है। यही इस दिन का संदेश है, यही इस दिन की खासियत है। आइए कार्यक्रम के अगले गीत को सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले के आवाज में।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी कि 1008 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दैनिक पत्रिका कार्यक्रम। आपने सुना चर्चा, और अब पहल के अंतर्गत आपको बताएंगे हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसका नाम है आयुष्मान भारत। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसे सन 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना के मुताबिक हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है, और साथ ही सरकारी और लिस्ट में शामिल प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज का भी

की भी सुविधा है। देश के किसी भी कोने में आप इलाज करा सकते हैं और अभी तक तकरीबन 40,000 अस्पताल इसके साथ इस योजना के साथ जुड़ चुके हैं। कुछ नए बदलाव भी आए हुए हैं। पहले तकरीबन 11 करोड़ परिवार थे, लेकिन अब वो 12 करोड़ परिवार इस के सूची में आ चुके हैं। आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर के परिवार भी इसमें शामिल हैं। 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए अलग से कार्ड बन रहा है, चाहे उनकी आमदनी कितनी भी हो। इसे आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड कहते हैं। SECC 2011 के लिस्ट में आने वाले गरीब परिवार, राशन कार्ड धारक परिवार, 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिक इसके पात्र हैं, अर्थात इस योजना के अधीन अपना नाम लिखा सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, beneficiary.nha.gov.in, या फिर आयुष्मान ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नजदीकी सरकारी अस्पताल या जन सेवा केंद्र पर भी जाकर आप इस कार्ड को बना सकते हैं। और दस्तावेज जो जरूरी है इस विशेष कार्ड के लिए, इस योजना के लिए, वो है आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी मदद के लिए 1-4-5-5-5 पर मुफ्त कॉल आप कर सकते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY योजना, आयुष्मान भारत।

और दोस्तों इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत तक हम पहुंचते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि स्टूडियो की घड़ी में 12:17:98 और इस कार्यक्रम के बाद, जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद 12:20 से आप सुनेंगे पाश्चात्य कार्यक्रम प्रतिज्ञा घोष के साथ। तब फिर मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और सबको खुश रखिए।

Welcome to the craziest party! Put your hands up!

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस परिषद में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हैं। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। गृहमंत्री आज गोवा राज्य पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज भी प्रदान करेंगे। ये सम्मान राज्य पुलिस बल के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुरक्षा उपायों और

0: बचाओ अभियान की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का काफी हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है।
1: लगभग 80% मलबा हट चुका है, केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। अभी इसमें 12 लोग मिले हैं, जिसमें से 6 डेड हैं और 6 अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
1: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: इस बीच भवन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्य जारी है। आज सफदरजंग अस्पताल से धौलाकुआं की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गंगा और कई अन्य नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि सोन नदी के जलस्तर में कमी से कुछ राहत मिली है। सोन नदी पटना के पास गंगा में मिलती है। इसमें पानी कम होने से दीघा तथा गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का दबाव कम हुआ है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट है। रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री जेवर बिटल की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री बिटल की ये यात्रा दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का अवसर है। ओपेक प्लस समूह के 7 प्रमुख देशों ने वैश्विक स्तर पर बनी अनिश्चितता के बीच अक्टूबर के लिए तेल उत्पादन नीति में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। इन देशों में सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 485 अंक गिरकर 76,000 पर और निफ्टी 145 अंक गिरकर 23,753 पर कारोबार कर रहा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की आज शाही सवारी का आयोजन हो रहा है। अंतिम शाही सवारी में भगवान महाकाल के 7 अलग अलग रूपों के दर्शन होंगे। सवारी शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और महाकाल घाटी, गुदरी चौराहा और रामानुज कोट होते हुए राम घाट पहुंचेगी। आकाशवाणी उज्जैन दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इसका लगातार प्रसारण करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah is chairing the 28th meeting of the Western Zonal Council in Panaji today. Chief Ministers and Senior Ministers of Goa, Gujarat and Maharashtra, along with representatives of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, are participating in the meeting. The council provides a structured platform to discuss issues affecting two or more states or the centre and states together and strengthen mutual cooperation. Matters requiring coordinated action and those remaining unresolved at the official level could be taken up for consideration. Later, Amit Shah will present the President's police colour to Goa Police. The Enforcement Directorate ED has conducted searches at 7 premises in Kolkata, Delhi and Ranchi in connection with a case involving Akhbar-e-Mashriq Private Limited, an Urdu daily newspaper, and its director and TMC MP, Nadeemul Haq. ED has recorded an enforcement case information report on the basis of an FIR registered.

0: Monsoon has hit Madhya Pradesh once again in full force. With two weather systems active, heavy rain has been forecast for the next 4 days and its effect is already visible on the ground. More from our correspondent.
1: Two monsoon systems formed over the upper part of the state have changed the weather pattern. The weather department has issued a heavy rain warning for 6 districts of the Rewa and Sagar divisions named Niwari, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna, Satna and Rewa. Meanwhile, around 40 districts of the state, including Indore Ujjain division, will continue to see light to heavy rainfall. The impact of the rain was clearly visible in the capital city Bhopal, where 2 gates of the Kaliasot dam had to be opened once again. Before this, 4 gates were opened on Saturday night to release water. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
0: The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Bihar, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal and parts of Northeast India till tomorrow. The Met Department said thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh and Tamil Nadu till tomorrow. The death toll from the devastating Nepal-Tibet flash floods has reached 1,355. According to the National Disaster Risk Reduction and Management Authority, the highest number of fatalities have been reported in Chitwan, followed by Navalparasi East. In tennis, defending champions Aryna Sabalenka and Carlos Alcaraz have stormed into the quarterfinals of the US Open. In the women's singles round of 16 yesterday, Belarusian top seed Aryna Sabalenka defeated American Taylor Townsend 6-4, 6-3 at Arthur Ashe Stadium. Sabalenka will face Czech player Linda Noskova in the quarterfinals tomorrow. In another round of 16 clash, Spain's Carlos Alcaraz thrashed American Tommy Paul in the pre-quarterfinals at Arthur Ashe Stadium. Benchmark domestic equity indices extended losses during the afternoon session today. The Sensex declined 467 points to 76,049, while the Nifty fell 138 points to 23,760 when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah chairs 28th meeting of Western Zonal Council in Goa. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar holds bilateral meeting with Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel, says in an era where whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Death toll in Delhi's building collapse rises to 7. MCD South Zone Deputy Commissioner for Engineers suspended. Enforcement Directorate conducts searches at 7 premises linked to TMC MP Nadimul Haq's Urdu Daily over money laundering. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। एमसीडी दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आर्यना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में केंद्र और सदस्य राज्यों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता वाले मामलों पर विशेष बल दिया गया।
3: बैठक में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर यानी राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में शामिल होंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। वे 20,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित 326 किलोमीटर लंबे पश्चिमी माल गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा और टांडा रोड के बीच एक नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे वडोदरा, छोटा उदयपुर और अलीराजपुर जिलों के लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने युवाओं से मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ दृढ़ रुख अपनाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में प्रतिबद्ध रहने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने उपस्थित सभी लोगों को नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में काम करने की शपथ भी दिलाई। उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य कृतियों का असमिया में अनुवाद करने की विश्वविद्यालय की पहल की प्रशंसा की। उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 110 करोड़ रुपए की अवसंरचना विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉ जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री, विदेश मामलों तथा व्यापार मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
1: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं। खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
0: डॉक्टर जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में अपनी लग्जमबर्ग यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों पक्षों के नेताओं ने कई बार एक दूसरे से बातचीत की है। विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग दोनों देशों के संबंधों का आधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश अंतरिक्ष, डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग की संभावनाओं को भी तलाश रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और लग्जमबर्ग के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि हुई है। इस अवसर पर श्री बेटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। श्री बेटल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज तड़के नई दिल्ली पहुंचे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया और सुरक्षा उपायों तथा जारी बचाव अभियान की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मलबे का 80% हिस्सा दशकों पुराने बहुमंजिले भवन स्थल से हटा दिया गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 7 हो गई है और 3 की हालत गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि भवन के मालिक की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई।
3: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज दुर्घटना स्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम अभियान में निरंतर काम कर रही है।
4: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर साहब को और चीफ सेक्रेटरी साहब को आदेश दिया है, जितने अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेवारी थी चाहे वो किसी भी रैंक का, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए, सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो बच्चे हैं यहां से उनको अकोमोडेट किया गया अलग अलग जगह पर, और आगे के लिए भी जितनी पब्लिक यूटिलिटीज हैं उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट देना होगा ताकि ये मनमर्जी से बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ ना कर पाए।
0: इस बीच दक्षिण जोन के एमसीडी उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता ललित कुमार, सहायक अभियंता सुनील चौहान और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। भवन मालिक के विरुद्ध

0: प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया है कि मलबे की भारी मात्रा के कारण बचाव अभियान शाम तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ बचाव अभियान के लिए विशेष और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है।
1: इसमें मतलब स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस में बेसिकली ब्रीचिंग सिस्टम, कटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जो है इक्विपमेंट्स है सीमेंट और कंक्रीट काटने के लिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट होते हैं इनको, स्लैब्स को रिमूव करने के लिए इन्फ्लेक्टेबल बैग्स वगैरह भी है जो इस्तेमाल करते हैं, और शोरिंग सिस्टम है, ये हाइड्रोलिक शोरिंग है, वुडन शोरिंग है, ये डिपेंड करता है किस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर है, क्या रिक्वायरमेंट है वो करती है, और डिटेक्शन सिस्टम, इसमें कैनाइन या लाइट डिटेक्टर्स इक्विपमेंट वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक वैमनस्य को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रसार और प्रकाशन तथा अवैध लेन देन के आरोपों से जुड़ा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा है कि स्वच्छ वायु एक मूलभूत आवश्यकता है। नई दिल्ली में आज स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छ वायु जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
2: ये उन प्रयासों को पहचानने के लिए है जो पूरे देश में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं कि हवा की गुणवत्ता बनी रहे और प्रदूषक तत्व PM10 तथा PM2.5 का स्तर उन सीमाओं तक नीचे लाया जाए जो नियामकों द्वारा तय की गई है। स्वच्छ हवा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं है बल्कि ये एक व्यवहारिक लक्ष्य है जिसे समर्पित प्रयासों, उचित योजना और जमीनी स्तर पर प्रभावी काम के माध्यम से हासिल किया जा सका है।
0: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा पर्यटन में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बड़ी क्षमता है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा और कल्याण एक्सपो संजीवनी 2026 में श्री गोयल ने कहा कि भारत अपनी मजबूत चिकित्सा व्यवस्था के जरिए दुनिया की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को उच्च गुणवत्ता, पारदर्शिता और मरीजों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए मानक स्थापित करने चाहिए। श्री गोयल ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में 35 लाख अंतर्राष्ट्रीय मरीजों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौसम विभाग ने बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कल तक गरज और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। आज शाम दिल्ली के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय है। राज्य में अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने 2 मॉनसून सिस्टम ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। मौसम केंद्र भोपाल ने रीवा और सागर संभाग के 6 जिलों निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं इंदौर, उज्जैन संभाग समेत प्रदेश के करीब 40 जिलों में हल्की से तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बारिश का असर राजधानी भोपाल में भी साफ नजर आया। यहां कलियासोत बांध के 2 गेट एक बार फिर खोलने पड़े। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है।
5: पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार समेत 12 जिलों की 10 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। इधर गंगा के डाउनस्ट्रीम में हाथीदह, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर में नदी के रौद्र रूप से भयावह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पुनपुन और सोन नदी में अभी भी उफान जारी है। पूर्व मध्य रेलवे ने पुनपुन रेल पुल संख्या 21 पर सोन नदी

0: का जलस्तर बढ़ने के कारण आज भी 10 मेमू रेलगाड़ियों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इस बीच आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने मुंगेर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की हर प्रकार से मदद की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: उधर नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363 हुई हैं। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 डूरंड कप के विजेता टीम वेस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब को राष्ट्रपति कप प्रदान किया। टेनिस में आरेना सबालेंका और कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में बेलारूस की शीर्ष वरीयता प्राप्त आरेना सबालेंका ने अमरीकी खिलाड़ी टेलर टाउनसेंड को हराया। पुरुष सिंगल्स में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अमरीका के टॉमी पॉल को पराजित किया। भारत ने AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप में प्रवेश कर लिया है। भारत ने ताशकंद में कल अंतिम क्वालिफाइंग मुकाबले में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 20 वर्ष में पहली बार इस प्रतियोगिता में जगह बनाई। AFC अंडर 20 एशिया कप अगले वर्ष 24 मार्च से 10 अप्रैल तक चीन में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लोक अदालत त्वरित किफायती और सुलभ न्याय विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 01123140812371717106 और 23314444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री जेवियर बेटल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कहा, जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। दिल्ली में सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई। MCD दक्षिण जोन के उपायुक्त और 4 इंजीनियर निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक के उर्दू दैनिक से जुड़े 7 परिसरों में धन शोधन के आरोप में छापेमारी की। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान। और टेनिस में आरेना सबालेंका तथा कार्लोस अल्काराज अमरीकी ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोलकाता অনুষ্ঠান শুনছেন 297.6 মিটারে অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে এখন শুনবেন খেয়াল, শিল্পী বিশ্বরূপ পাল। শিল্পীকে তবলায় সহযোগিতা করছেন পিনাকী চক্রবর্তী, হারমোনিয়ামে সোমনাথ বর্ধন, রাগ গৌর সড়ং।

0: আকাশবাণী কলকাতা, শুরু হচ্ছে সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গের দ্বিতীয় অধিবেশন। অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 297.6 মিটারে, অর্থাৎ 1008 কিলোহার্টজে। স্টুডিওর ঘড়িতে এখন সময় বিকেল 4:59 হয়ে 59 সেকেন্ড।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে প্রশান্ত কুমার। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने कहा कि यह सम्मान गोवा पुलिस की समर्पित सेवा, अनुशासन और राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति का निशान भी कहा जाता है। ये किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये समारोह तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया अनिश्चितता से चिंतित है, भारत और लग्जमबर्ग के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंध है। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात आज नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल से मुलाकात के दौरान कही। विदेश मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते को दिए गए मजबूत समर्थन के लिए लग्जमबर्ग का आभार व्यक्त किया।
2: Ours is a very trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता बहुत भरोसेमंद है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हमने बहुत कुछ किया है और हम आगे भी और अधिक करने का भरोसा करते हैं, खासकर आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, विविधता लाने और भविष्य में मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी मिलने की संभावना के संदर्भ में।
2: Ratification likely in the coming future.
1: इस अवसर पर श्री जेवियर बैटल ने कहा कि लग्जमबर्ग का भारत के साथ विश्वासपूर्ण और ईमानदार संबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह के लिखे एक लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। इसके लिए मानवीय जुड़ाव, शिक्षण पद्धति और विद्यार्थियों की क्षमताओं को पहचानने की क्षमता जरूरी है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगे। वडोदरा में प्रधानमंत्री 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का उद्घाटन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने उर्दू दैनिक अखबार मशरिक और उसके निदेशक तथा तृणमूल कांग्रेस सांसद नदीमुल हक से जुड़े एक मामले में कोलकाता, दिल्ली और रांची में 7 परिसरों में छापेमारी की है। निदेशालय ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिकता को कथित तौर पर बढ़ावा देने संबंधी सामग्री के प्रकाशन तथा अवैध लेनदेन के आरोपों से जुड़ा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है, उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा।
4: इस बिल्डिंग के मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में अवैध 5 मंजिला भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्य निकेतन में इमारत ढहने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। न्यायालय की पीठ ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक ही

जिम्मेदार नहीं है बल्कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। न्यायालय ने कहा कि विश्वविद्यालय ने दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं की है। न्यायालय ने बचाव कार्य में तेजी लाने और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने आज सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की एजादा सेडान से होगा। वहीं सरिता कांस्य पदक के मुकाबले में चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैडम, मैं 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचेता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 5:21:18 हुए हैं। वक्त हो रहा है कार्यक्रम उर्वशी का। उर्वशी के झरोखा में आज हम बातें करेंगे आसाम के बिहू के बारे में। आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका।

जाता है। असम की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वहां के प्रमुख त्योहारों का संबंध भी खेती और फसल से रहा है। बिहू किसानों के जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाता है। यह पर्व लोगों की प्रकृति, कृषि और अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। बिहू के अवसर पर लोग अपने परिवार, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। बिहू मुख्य रूप से तीन तरह का होता है, बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। तीनों बिहू का अपना अपना अलग अलग महत्व और स्वरूप है। बोहाग बिहू, जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, सामान्यतः अप्रैल महीने में मनाया जाता है। यह समय नववर्ष और नई कृषि ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इस समय प्रकृति भी नए रूप में दिखाई देती है, पेड़ पौधों पर नई पत्तियां और फूल दिखाई देते हैं और वातावरण में नई ऊर्जा और उत्साह होता है। बोहाग बिहू के अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। युवा लड़के और लड़कियां पारंपरिक बिहू नृत्य करते हैं। माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू कहा जाता है, जनवरी महीने में मनाया जाता है। इसका संबंध मुख्य रूप से फसल की कटाई के बाद मिलने वाली समृद्धि और आनंद से है। किसानों के लिए यह खुशी का अवसर होता है, क्योंकि उनकी मेहनत की फसल घर आ चुकी होती है। माघ बिहू से पहले लोग सामूहिक रूप से भोजन तैयार करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भेलाघर बनाए जाते हैं और अगली सुबह मेजी जलाने की परंपरा होती है। लोग विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पकवान बनाते हैं, जैसे पीठा, लारू और चावल से बने अनेक व्यंजन। परिवार और समाज के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं।

भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग राज्यों की अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराएं, वेशभूषा और त्यौहार है। इन त्योहारों में असम का बिहू विशेष महत्व रखता है। बिहू असम का सबसे प्रमुख लोक पर्व है। यह असम की कृषि प्रधान जीवन शैली, प्रकृति के प्रति प्रेम, लोक संगीत, नृत्य और सामाजिक एकता का सुंदर प्रतीक है। बिहू के अवसर पर पूरा असम उत्साह, उमंग और आनंद से भर जाता है।

काती बिहू के जिसे कोंगाली बिहू भी कहा जाता है सामान्यतः अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इसका स्वरूप बोहाग और माघ बिहू की तुलना में अधिक शांत और धार्मिक होता है। इस समय खेतों में फसल बढ़ रही होती है और किसान अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। काती बिहू के अवसर पर लोग घरों और खेतों में दीप जलाते हैं। विशेष रूप से खेतों में दीप जलाने की परंपरा प्रकृति और कृषि के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाती है। लोग सुख समृद्धि और अच्छी फसल की कामना करते हैं। बिहू की सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में बिहू नृत्य और बिहू गीत शामिल हैं।

बिहू नृत्य में उत्साह, ऊर्जा और सुंदर तालमेल दिखाई देता है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा और लोक वाद्यों का विशेष महत्व है। बिहू गीतों में प्रेम, प्रकृति, ग्रामीण जीवन और मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति होती है। बिहू केवल मनोरंजन का त्यौहार नहीं है, यह समाज में एकता, भाईचारे और सहयोग की भावना को मजबूत करता है। इस पर्व पर लोग अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक सीमाओं को भूलकर एक साथ उत्सव मनाते हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया जाता है और छोटे बड़े सभी लोग मिलकर खुशियां बांटते हैं। कहा जा सकता है कि बिहू असम की आत्मा और पहचान का प्रतीक है। इसके तीनों रूप बोहाग बिहू, माघ बिहू और काति बिहू कृषि, प्रकृति और मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। बिहू के गीत, नृत्य, पारंपरिक भोजन और रीति रिवाज असम की संस्कृति की सुंदरता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। बिहू हमें प्रकृति का सम्मान करने, मेहनत का महत्व समझने, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और समाज में प्रेम तथा भाईचारे की भावना बनाए रखने का संदेश देता है। इसलिए बिहू केवल असम का त्यौहार नहीं बल्कि भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है।

अभी आप सुन रहे थे जरोखा में बिहू आसाम के बारे में और अब कुछ फिल्मी नक में। आई सुनते अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में फिल्म मिस्टर आशिक से गीत। गीतकार हिंदी भर और संगीत जतिन ललित का है।

आइए सुनते अगला गीत साधना सरगम की आवाज में। फिल्म है विश्वात्मा, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत विजू साह का है।

आइए उर्वशी कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म डर से। कलाकार हैं लता मंगेशकर, विनोद राठौर और साथी। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत शिव हरी का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की भी घोषणा की गई। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रिजयनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा और मतगणना 16 अक्टूबर को की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पदक पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: गोवा के तले गांव में आयोजित समारोह में श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लग्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहलें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाएगा। इस बीच पुलिस ने इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को आज राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। न्यायालय ने कहा कि इस त्रासदी के लिए केवल भवन मालिक के साथ दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय भी जिम्मेदार है। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज

0: And reigning world champion Sheetal Devi has confirmed a medal for India by storming into the women's compound individual final on the third day of the Stage 3 of World Archery Para Series in Ahmedabad today. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचेता चैनल है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। स्टूडियो की घड़ी में 6:10:20 हुए हैं। ये वक्त हो रहा है वार्ता का। आज वार्ता का विषय है नेत्रदान पखवाड़ा। वार्ताकार हैं आलोक अग्रवाल, आइए सुनते हैं।
2: आंखों की बीमारी इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है जिसके वजह से बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई हैं। तो मैं श्रोताओं से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर आई एग्जामिनेशन जरूर कराएं अपने आंख चिकित्सक के साथ, जो कि वो बहुत अर्ली जांच करके ये देख सकें कि उनमें कोई आंखों की समस्या है कि नहीं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी आंखों क्या सेफ्टी का ध्यान वो जरूर रखें। सेफ्टी का कहने का मतलब है कि अगर वो किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपने वर्किंग जगह पे जहाँ पे उनको टूल्स के साथ कोई काम करना पड़ रहा है या ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे उनको आई इंजरीज लगने की चोट है, वो अपने आंखों का प्रोटेक्शन जरूर करें। तीसरा पॉइंट जरूर मैं हाईलाइट करूंगा कि एक अच्छा डाइट, उनके बैलेंस डाइट आंखों को अच्छा रख सकता है। बैलेंस डाइट काफी रिच होता है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रीनी वेजिटेबल्स में, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आंखों में। फ्रूट्स में आप मैंगो ले सकते हैं, एप्रिकॉट्स ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स में आप स्वीट पोटैटोस, कैरेट्स आप ले सकते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन भी अगर रहे, जिसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा रहेगा, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस आपको के काम करने में बहुत मदद मिलेगा। ऑरेंज जूस आप ले सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं है तो, को हेल्प करेगा अपने इन्फ्लामेशन से फाइट करने में और आपका इम्यून सिस्टम में। और जिनको मैकुलर डिजेनरेशन है उनमें विटामिन सी लेने से काफी आराम मिलता है। कोई भी जो स्क्रीन टाइम है जो कि आजकल बच्चों में काफी कॉमन देखा गया है, उस स्क्रीन टाइम को आपको लेस करने का बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कोई भी लंबा प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम ना करें, फ्रीक्वेंट आई ब्रेक लें, जो मैंने पहले भी बताया है कि 20-20-20 मतलब हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पे आप जरूर देखें। फॉर फ्यू पानी जरूर पिएं। पानी पीने से आपका आंख में हाइड्रेट रहेगा और जिससे आपको ड्राइनेस को प्रिवेंट करने में आपको काफी मदद मिलेगा। हाइजीन को जरूर आंखों के मेंटेन करें। अगर आपका हाइजीन काफी अच्छा रहेगा तो आंखों में एलर्जी की भावना नहीं रहेगी। और बार बार अगर पब्लिक जगह पे आप जा रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं, उनको वापस अपनी आंखों में टच ना करें, खासकर कि जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। जो लोग बड़े लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग के वजह से काफी सारे आई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन या सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, इस टाइप की जितनी भी बीमारियां हैं जहां पे स्ट्रेस रिलेटेड ये सब होता है, तो आपको स्मोकिंग जरूर छोड़ना चाहिए। एक हेल्दी वेट को जरूर मेंटेन करें क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जिनको भी है उनको आंख की परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपका वेट आज अगर अच्छा नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आंखों में भी असर आएगा बाद में जाके। मैंने पहले ही बताया कि आप अपना मोबाइल्स का कम यूज करें। तीसरा चीज आजकल बहुत कॉमन देखा गया है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट। एक्चुअली अगर आप देखें कि कहीं भी बाहर अगर आप जा रहे हैं और धूप में जा रहे हैं जहां कड़ी धूप है, तो अल्ट्रा वायलेट रेस की वजह से आंखों में काफी डैमेज होता है। सबों से मैं एक ही बात बोलूंगा कि चश्मा जरूर लगा के जाएं जिससे उनको सनबर्न और स्किन कैंसर और आंखों का जो रेटिना डैमेज होता है वो ना हो। सबसे कॉमन चीज है घरों में कि हमें पता कैसे चले कि आंख वीक कैसे है। जैसे बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों में डायग्नोसिस करना कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर छोटे बच्चे बार बार आंख रगड़ रहे हैं, मोबाइल को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, टीवी के पास नजदीक से जा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने आई डॉक्टर के पास तुरंत जाएं। बड़ों में अगर लग रहा है कुछ सर्टेन एज के बाद, 40-50 ईयर्स के बाद ऐसा लग रहा है कि उनको आंखों में कुछ परेशानी हो रही है और डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, वो अपने आई डॉक्टर के पास जरूर जाएं और अपना रेटिना का जांच कराएं। जो भी क्रॉनिक कंडीशंस हैं आपके, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और भी जो भी, आप उसको अगर अच्छा रखेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपका आंख भी अच्छा रहेगा। आजकल ये भी देखा गया है कि बच्चों में स्क्रीन टाइम जो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो क्यों बढ़ गया है? एजुकेशन को देखिए, या अगर आप पढ़ाई का जो सिस्टम है हमारे यहाँ देखिए, या तरीका देखिए पढ़ाने का, वो सारा चीज आजकल लैपटॉप मोबाइल्स

0: और खास करके कोविड के बाद तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सभी बच्चों के साथ इवन उनके पेरेंट्स के साथ जरूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि स्क्रीन टाइम को एटलीस्ट बहुत कम करिए, उनको आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा भेजिए। उनको स्कूल एक बहुत अच्छा काम कर सकता है आँख के अस्पतालों के साथ कि वो अवेयरनेस प्रोग्राम आँखों के अस्पताल के बीच बीच में कंडक्ट कराए। अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब है कि बच्चों को जो डॉक्टर्स आएंगे उनको स्क्रीन आउट करें कि उनको आँखों में कोई परेशानी है कि नहीं। परेशानी का मतलब रिफ्रैक्टिव एरर, एनी फॉर्म ऑफ डिजीज जैसे कि उनको कैटरैक, ग्लूकोमा, रेटिना समस्या, स्क्विंट, ये सब कॉमन बहुत है बच्चों में जो कि इनको इवैल्यूएशन करने की आई डॉक्टर को बहुत ज्यादा जरूरत है। सो स्कूल को एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए हर स्कूल को अपने आंखों के डॉक्टर के साथ। दूसरा, बुजुर्गों में ये देखा गया है कि कैटरक जो कि बहुत कॉमन है वो को कराना चाहिए। मिथ ये है कैटरक में कि मुझे ठंडा में ही कराना चाहिए, मुझे गर्म में नहीं कराना है। आजकल का जो लाइफस्टाइल हमारा हो गया है, सबके घरों में एसी है, टेम्परेचर अच्छा रहता है, तो कैटरक आप किसी भी जगह करा सकते हैं, किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं। वो आजकल बहुत कॉमन हो गया है अस्पतालों में। सो एक सर्टेन एज के बाद चाहे बच्चे हों बूढ़े हों, सबों को एक आई एग्जामिनेशन की जरूरत। तीसरा, आजकल जो काफी ज्यादा चर्चित में है वो है आई डोनेशन कैंप। देखिए, बॉडी का हर एक ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो आँख हो, दिल हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे कोई भी बॉडी का पार्ट हो। हम लोग आई डोनेशन की बात कर रहे हैं तो कोई भी जिनकी मौत होती है उनके परिवार को ये समझना पड़ेगा कि जो जाने वाले तो वो चले गए, लेकिन जो है और जिनको कॉर्निया की जरूरत है, अगर इनको कॉर्निया डोनेट कर दिया जाए तो वो जिंदगी को दोबारा भी देख सकते हैं, जिसके वजह से उनकी जिंदगी पूरी खुशहाल रहेगी। सो हर आदमी को एक आई डोनेशन जो अवेयरनेस है, मैं हॉस्पिटल्स को भी यही बोलूंगा कि बीच बीच में कैंप लगाएं, अवेयरनेस प्रोग्राम लगाएं, गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स सबके कोलैबोरेशन से पब्लिक को अवेयर जरूर करें। आजकल एक चीज बहुत कॉमन हो गया है, अगर आप जिस समय चंद्र ग्रहण होता है या कोई भी ऐसा इक्लिप्स देखने को मौका मिलता है, जो कि बोला जाता है कि आप एक्सरे प्लेट लगा के आप उसको देखिए, मैं इस मिथ को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब भी आप बाहर निकले आप सनग्लासेस जरूर पहन के निकले, क्योंकि बाहर में जो रेज है वो 99-100% आपका यूवीए और यूवीबी रेज है, जो कि पीक सनलाइट आवर्स में ये होता है। दोनों रेज जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से होता है, बट वो डिफर करता है अपने वेवलेंथ पे, उसके पेनिट्रेशन डेप्थ पे और उनके स्किन के इफेक्ट पे। सो यूवीए जो रेज है उसका वेवलेंथ और पेनिट्रेशन डेप्थ स्किन में बहुत लंबा है, जो कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रीमेच्योर एजिंग को और रिंकलिंग को। यूवीबी रेज जो है वो एक शॉर्टर वेवलेंथ है और जो कि प्राइमरीली डैमेज करता है आउटर लेयर ऑफ द स्किन, जिसको हम एपिडर्मिस भी बोलते हैं, जिसके वजह से हम सनबर्न और डीएनए म्यूटेशन जो कि लीड करता है फर्दर स्किन कैंसर्स में, उसमें दिक्कत होती है। सो मैं सबों को एक ही चीज बोलूंगा कि इस तरह का जो इक्लिप्स या कोई भी चीज है, जब सनलाइट को हम लोग को देखना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर देखने की भी जरूरत है तो बढ़िया ग्लासेस जिसमें वो प्रोटेक्शन रहे, अप्रूव्ड रहे, उसी को आप लगा के देखें जरूर।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था नेत्रदान पखवाड़ा पर। वार्ताकार थे आलोक अग्रवाल।

मीडियम वेव 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का यह संचयता चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में 6:30:35 हुए हैं। वक्त रहा है कार्यक्रम गुलगुलसन का। आइए गीत और गजल के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं सबसे पहले जगजीत सिंह की गजल।

0: आइए गुल गुलशन कार्यक्रम की आखिरी गजल सुनते हैं पंकज उदास की आवाज में।
1: पहली बार एक गजल पेश कर रहा हूं जो उर्दू बहर या मीटर के बजाय हिंदी छंदों के वजन पर है। उम्मीद है ये तजुर्बा आपको पसंद आएगा। मुलाहिज़ा फरमाएं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की

0: दो दो विधानसभा सीटों और पुद्दुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुद्दुचेरी की थट्टनचावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यवसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
1: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: समारोह गोवा के तलेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। श्री शाह ने 1930 साइबर धोखाधड़ी हेल्पलाइन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट सेवा भी शुरू की। यह 12 भाषाओं में नागरिकों और पर्यटकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% सामान भारतीय कंपनियों से खरीदे जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंधन निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। लक्जमबर्ग के ऊर्जा तथा पर्यटन मंत्री लेक्स डेल्स ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अंतरिक्ष क्षेत्र में मौजूदा सहयोग, भविष्य की संभावनाओं और संस्थागत तथा व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत सिंह का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षक शिक्षा के कलाकार शीर्षक वाले इस लेख में जयंत सिंह ने बताया है कि शिक्षण एक कला और रचनात्मक कार्य है। लेख में श्री सिंह ने यह भी बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उल्लास, विद्यांजलि और कई अन्य पहले शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को मजबूत कर रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा का दायरा केवल इलाज तक सीमित नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यों की भागीदारी बढ़ाकर कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत करने की कार्य योजना की समीक्षा की गई। श्री चौहान ने निर्धारित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी और समय पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में ढही इमारत स्थल का आज फिर दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह दुर्घटना हुई है उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए। अहमदाबाद में शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शीतल देवी ने सेमीफाइनल में आज सरिता को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम में 297.6 मीटर यानी 1008 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोलकाता का संचयिता चैनल है। स्टूडियो घड़ी में 7:32 हो रहे हैं। वक्त हो रहा है पत्रिका कार्यक्रम दर्पण का। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रोशन मुरारका। सबसे पहले एक नजर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस पुलिस बलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के महत्व को दर्शाता है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों की पुलिस को आपस में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी और संगठित अपराध जैसी अंतर्राष्ट्रीय चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। पुलिस सहयोग से देशों के बीच सूचना साझा करने, अपराधियों को पकड़ने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलती है। यह दिवस पुलिस अधिकारियों के समर्पण और समाज की सुरक्षा में उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर भी है। ये थी एक नजर।

आप सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता, जो पुस्तक समीक्षा और साहित्य पर आधारित हमारा कार्यक्रम होता है। आज हम बातें करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में।

हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक और युग प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा दी तथा कविता, नाटक, निबंध, पत्रकारिता और सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके साहित्य में देश प्रेम, समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और हिंदी भाषा के प्रति गहरा प्रेम दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी में एक समृद्ध और साहित्यिक परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबू गोपाल चंद्र स्वयं कवि थे और गिरधर दास नामक से रचनाएं करते थे। घर के साहित्यिक वातावरण का भारतेंदु के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत कम आयु में ही साहित्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय देना शुरू कर दिया था। उन्हें हिंदी के साथ साथ संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी आदि भाषाओं का भी ज्ञान था। वे भारतीय समाज और देश की तत्कालीन परिस्थितियों से बहुत प्रभावित थे। उनका जीवन बहुत लंबा नहीं रहा, मात्र 34 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1885 को उनका निधन हो गया। कम आयु में निधन के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसी दिशा दी जिसका प्रभाव आज तक दिखाई देता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में रचनाएं की। उन्होंने कविता, नाटक, निबंध, पत्रकारिता और अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी आदि प्रमुख हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन भारतीय समाज और देश की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव दिखाई देता है। अंधेर नगरी भारतेंदु की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। यह एक व्यंग्यात्मक नाटक है जिसमें अव्यवस्थित शासन और मूर्खतापूर्ण न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग किया गया है। इसकी प्रसिद्ध उक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस नाटक के माध्यम से भारतेंदु ने बताया कि यदि शासन व्यवस्था में विवेक और न्याय का अभाव हो तो समाज में अराजकता पैदा हो सकती है। भारत दुर्दशा में भारत की तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इसमें देश की गरीबी, पिछड़ापन और विदेशी शासन के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। इस रचना में भारतेंदु की राष्ट्रीय भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज और देश के महत्वपूर्ण विषयों को जनता के सामने रखा। उन्होंने कवि, वचन सुविधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और वाला बोधनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। उनकी पत्रकारिता में सामाजिक जागरूकता, राष्ट्रीय भावना और जनहित के मुद्दों को विशेष स्थान मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा के महान समर्थक थे। उन्होंने हिंदी को जनसाधारण तक पहुंचाने और उसे साहित्य तथा सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। उनका प्रसिद्ध कथन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। इसका अर्थ है कि अपनी भाषा को उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का आधार है। भारतेंदु का मानना था कि किसी देश के संस्कृति और विचारों को मजबूत बनाने में उसकी अपनी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतेंदु केवल साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक जागरूक समाज चिंतक भी थे। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की अनेक बुराइयों पर प्रश्न उठाए।

उन्होंने अज्ञान, रूढ़ियों, सामाजिक असमानता और अन्य समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनकी रचनाओं में महिलाओं की स्थिति, शिक्षा, गरीबी और सामाजिक सुधार जैसे विषय भी दिखाई देते हैं। वे चाहते थे कि भारतीय समाज आधुनिक शिक्षा और जागरूकता को अपनाए तथा अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसी कारण उनके समय को हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग कहा जाता है। उन्होंने अनेक युवा साहित्यकारों को प्रेरित किया और हिंदी में आधुनिक नाटक, पत्रकारिता तथा गद्य लेखन के विकास को गति दी। इस कारण उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में अग्रणी स्थान प्राप्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव को मजबूत किया। उन्हें साहित्य को केवल मनोरंजन का माध्यम न मानकर उसे समाज सुधार, राष्ट्रीय जागरण और जन चेतना का साधन बनाया। उनकी रचनाओं में देश प्रेम, सामाजिक जागरूकता, भाषा प्रेम और मानवीय संवेदना आज भी प्रासंगिक है। उनका साहित्य हमें अपनी भाषा, संस्कृति और देश के प्रति सम्मान की भावना सिखाता है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव आधुनिक हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक के रूप में अमर रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता, पुस्तक समीक्षा और साहित्य पर आधारित यह कार्यक्रम पेश किया गया। आज हम बातें कर रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। और अब चलते चलते फिल्मी नगमे, आइए सुनते हैं मेरी जंग फिल्म से शब्बीर कुमार की आवाज में गीत

आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म अजनबी से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देवर्मन। गीत को सुनते सुनते आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन।

0: এই সঙ্গেই শেষ হলো আজকের নানা রঙের গানের অনুষ্ঠান। আজকের অনুষ্ঠানের শিল্পীরা ছিলেন অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, পবন দাস বাউল, আশিস গিরি, ভূপেন হাজারিকা, অন্তরা চৌধুরী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলা মজুমদার। আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন সঞ্চয়িতা প্রচার তরঙ্গে। পরবর্তী অনুষ্ঠান দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে মুকেশ কুমার। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची, भारत का पदक पक्का। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
1: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेस सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। CBRN टोही वाहन क्षेत्रों की पहचान, निगरानी और उन्हें चिन्हित करने में सक्षम होंगे। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कम्प्लीट हुआ।
0: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
0: इससे पहले गृहमंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। श्री शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें अब केवल विवादों के समाधान का मंच नहीं रह गई हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
4: गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए। दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में केंद्र और राज्यों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज समारोह में श्री शाह ने गोवा पुलिस की सेवा और साहस की सराहना की। उन्होंने 1930 हेल्पलाइन के लिए AI आधारित वॉयस असिस्टेंट शुरू किया। श्री शाह ने 112 हेल्पलाइन पर कम हुए प्रतिक्रिया समय का उल्लेख किया और गोवा पुलिस से 2029 तक नशीले पदार्थों की समस्या खत्म करने में नेतृत्व करने का आह्वान किया। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार

0: शनिवार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी छूट देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिन के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैक टेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीट और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा भी की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मधुरंतकम और धरपुरम सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की जाएगी। नामांकन इस महीने के 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में इमारत ढहने की घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने कहा कि जांच में ये देखा जाए कि इमारत के लिए सभी जरूरी मंजूरियां ली गई थीं या नहीं, किसी भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी दी जाए। न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास निजी पीजी और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। न्यायालय ने नगर निगम को सभी पीजी आवासों का निरीक्षण कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनका संचालन जरूरी मंजूरियों और भवन उपनियमों के अनुसार हो रहा है। केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नगर निगम की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को भरोसा दिलाया कि घटना से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उच्च न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को 10 दिन के भीतर जवाब और हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।

0: ये आकाशवाणी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने इसरो के निजीकरण से जुड़ी खबरों को खारिज कर दिया है। बेंगलुरु में आज उन्होंने कहा कि इसरो एक सरकारी संगठन है और इसके निजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है।
1: इसरो इज नॉट प्राइवेट।
2: इसरो एक सरकारी संस्था है और हम सरकारी निवेश के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसरो और NCS के मुख्य लक्ष्यों में से एक बजट के अनुरूप अंतरिक्ष उपकरणों की लागत कम करना है। इसरो को हर साल सरकार आवश्यकता के अनुसार बजट देती है। बजट की कोई कमी नहीं है।
0: चीन में भारतीय दूतावास ने पिछले महीने हुए भीषण भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में लापता भारतीय नागरिकों की परिजनों से पहचान प्रक्रिया में सहायता के लिए DNA नमूने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दूतावास ने कहा कि जो परिवार DNA संबंधी जानकारी देना चाहते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त CODIS प्रारूप में संबंधित जानकारी भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराएं। दूतावास इस जानकारी को संबंधित चीनी अधिकारियों को भेजेगा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान की अजादा सिदान से होगा। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रसारित होने वाले पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में आज का विषय है लोक अदालत, त्वरित, किफायती और सुलभ न्याय। आज रात 9:30 बजे इस फोन इन कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञों से इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। सवाल #AskAIR के साथ X पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा क्षेत्रीय परिषदें विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए LPG रिफिल बुकिंग का 25 दिन का अंतराल समान रहेगा। नई दिल्ली में सत्य निकेतन इमारत ढहने की घटना में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। निर्वाचन आयोग ने असम की नगांव लोकसभा सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव की घोषणा की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 2-2 विधानसभा सीट तथा पुदुचेरी में 1 सीट पर भी उपचुनाव। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जी हाँ दोस्तों, कभी कभी किसी से इस तरह से मुलाकात हो जाती है कि एक ही मुलाकात ऐसा लगता है बस ता उम्र की यादों के पन्नों में, जी हाँ, गोल्डन अक्षरों से दर्ज हो गई है। मेरे पास एक और मैसेज आया है, आपका ही वेट कर रही थी, नाइस सॉन्ग्स मीनाक्षी लिख।
1: और आज पूरे आधे घंटे हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोक अदालत क्या है, कैसे ये काम करती है, इसकी प्रक्रिया क्या है और आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे आज के मेहमान हैं एडवोकेट आशीष कुमार पांडे जी को, जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। नमस्कार आशीष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
2: थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन ऑल इंडिया रेडियो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
1: जी श्रोताओं, और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे नंबर पर कॉल करना शुरू कीजिए। नंबर है 0112311 0412317171 0112317171 06 और 0112311 4444 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप

0: नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रश्न #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष जी, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोक अदालत क्या है और ये कैसे काम करती है।
1: देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, वो सबके लिए न्याय की उपलब्धता होनी चाहिए, वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसी तरीके से संविधान में त्वरित न्याय की भी बात करी गई है। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को जब हम एक वास्तविकता के साथ सामने रखते हैं कि भारत की न्याय प्रणाली में आप पाएंगे कि मामले बहुत समय तक लंबित हो जाते हैं, लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है, लोगों को कई बार आप पाते हैं कि प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिल पाती है, और सालों साल, जैसे कि एक पॉपुलर डायलॉग है कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है, और बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हैं सरकारों की तरफ से कि किस तरीके से हम उन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज को प्रैक्टिकली जमीन पर उतार पाएं। अब इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास रहा है, हमने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 87 में लाए, उसके तहत मल्टी टीयर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। नेशनल लेवल पर आपकी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी होती है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। अब ये अथॉरिटीज समय समय पर उन फोरम्स को कॉन्स्टिट्यूट करती रहती हैं जिन फोरम्स में कोर्ट में चल रहे केसेस या जो केसेस कोर्ट में ले जाए जाने वाले हैं उन केसेस को रेफर कर सकते हैं
0: जी।
1: ये फोरम्स आपस में दोनों पार्टीज को बिठाकर एक तरीके से कॉन्सिलिएशन का काम करती हैं और आपस में ही एक सुलह समझौते के आधार पर अपना अवार्ड पास करती हैं। तो एक तरीके से जिसको हम ADR सिस्टम कहते हैं, एक वैकल्पिक न्याय व्यवस्था है, इसकी तरफ प्रयास किया गया है लोक अदालतों के द्वारा जी।
0: जी, और अब हमारे श्रोताओं के प्रश्नों की भी शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा हिसार से हमारे साथ हमारे श्रोता जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी।
2: हाँ जी, नमस्कार जी, और वकील साहब को भी नमस्कार जी।
1: नमस्कार राजेंद्र जी,
2: मैं ये जानना चाहता हूँ वकील साहब से कि लोक अदालत में कौन से केसों की सुनवाई होती है और दूसरा और कौन से केस की नहीं होती। आम आदमी कैसे पता करे कि कहाँ लोक अदालत लगती है और इसके बारे में कब कब सूचना दी जाती है, इसके बारे में जानना था। नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार। देखिए, मैं आपके आखिरी क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, कब कब लोक अदालतें लगती हैं और कहाँ कहाँ लोक अदालतें लगती हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक एनुअल कैलेंडर जारी करती है जिसमें कि कब कब लोक अदालतें लगनी हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड कैलेंडर होता है। अब दूसरा प्रश्न आपका है, ये कहाँ लगती हैं। न्याय के सर्वोच्च स्तर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तालुका स्तर पर, मंडल स्तर पर, हर जगह इन लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। और वो लोक अदालतें सामान्यतः जो राष्ट्रीय कैलेंडर बना होता है उसके अनुसार काम करती हैं और कभी कभी स्पेशल लोक अदालत भी लगती हैं। फिर आपने सवाल पूछा कि किस तरीके के केसेस इसमें डील किए जा सकते हैं और किस तरीके के नहीं डील किए जा सकते हैं। देखिए, जो भी सिविल केसेस होते हैं ऑलमोस्ट सारे केसेस लोक अदालतों में रेफर किए जा सकते हैं, वहां पर ले जाए जा सकते हैं। और वो क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल होते हैं, जैसे आपका चेक बाउंस का केस हो गया या ऐसे कंपाउंडेबल केसेस जिसके लिए लॉ में प्रोविजन है, वो सारे केसेस लोक अदालतों में लाए जा सकते हैं। लेकिन जहां पर कोई हीनस क्राइम हुआ है, जैसे अगर कोई रेप का केस हुआ है, एक मर्डर हुआ है, इस तरीके के केसेस में चूंकि स्टेट भी अपने आप में एक पार्टी होती है, ये क्राइम्स न केवल विक्टिम के अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं बल्कि समाज के खिलाफ भी एक क्राइम होता है, इस तरीके के केसेस को लोक अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। जो आपकी पारिवारिक झगड़े होते हैं, जो आपके समाज में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, या एक बहुत बड़ी यूटिलिटी निकल कर आई है लोक अदालतों की, आपका गाड़ियों का चालान हो जाता है, आपके बिजली बिल कभी ज़्यादा आ जाते हैं या पानी का बिल ज़्यादा आ जाता है, इस तरीके के सारे मुकदमों की सुनवाई आप पाते हैं लोक अदालतों में होती है और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हम पाते हैं कि पिछले करीब 5 सालों में करोड़ों केसेस ऐसे हुए हैं, छोटे छोटे केसेस जिन

0: हकों की लोक अदालतों के द्वारा आपसी सुलह समझौते से कंप्लीट किया जा सका है।
1: जी आशीष जी हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से राकेश जी। जी राकेश जी।
2: जी नमस्कार विशेषज्ञ को मेरा भी नमस्कार। मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार राकेश जी।
2: जी मेरा ये प्रश्न है कि जब हम लोक अदालत में जो है केस बनते हैं तो कितना टाइम हमारे को उसमें लग सकता है, मेरा ये प्रश्न है।
0: देखिए लोक अदालत एक दिन विशेष के लिए तय की जाती है, एक पर्टिकुलर डे पर आपका मैटर मार्क होता है। लेकिन लोक अदालत की चूंकि प्रक्रिया इस तरीके की होती है कि कॉन्सिलिएशन पहले जरूरी होता है, तो जब भी आपका केस लोक अदालत के लिए या आप खुद ही एप्लीकेशन के थ्रू रेफर कराते हैं या कोर्ट को कभी लगता है जिस कोर्ट में पेंडिंग है कि ये एक सुइटेबल केस हो सकता है लोक अदालत के लिए, इसको भेजा जाना चाहिए, तो उसके पहले एक कॉन्सिलिएशन की प्रोसेस, दोनों पार्टीज आपस में बैठकर बात करके कोई एक ऐसा समझौता जो कि दोनों पार्टीज को मंजूर है, जब वो चीज हो जाती है तो उसके बाद आप पाते हैं कि ये केवल एक दिन में ही समाप्त हो जाता है। किसी एक दिन विशेष के लिए लोक अदालत लगती है और अगर पार्टीज ने अपना समझौता कर लिया है तब तो वहां पर लोक अदालत अवार्ड पास कर देती है और वो अवार्ड एक डिक्री ऑफ द कोर्ट होता है। जी
1: आशीष, हम लोग केसेस की बात कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे अप्लाई किया जा सकता है।
0: जी देखिए केसेस को अप्लाई करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इनफैक्ट केसेस में भी मैं कैटेगराइज करूंगा कि एक तरीके का केस होता है जो ऑलरेडी फाइल हो चुका है और कोर्ट में चल रहा है। दूसरा एक तरीका यह होता है कि आप कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो जो ऐसे मामले हैं जहां पर कोई पार्टी कोर्ट में केस फाइल करने के बारे में सोच रही है वो कंसर्न कोर्ट की लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, लीगल सर्विसेज कमेटी के पास एक एप्लीकेशन दे सकती है और उस एप्लीकेशन के बाद दोनों पार्टीज को नोटिस चली जाती है कि ये आपका कोर्ट आपका केस इस पर्टिकुलर मीडिएशन के लिए लोक अदालत के लिए रेफर किया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जो मैटर ऑलरेडी चल रहे हैं वहां पर या दोनों पार्टीज आपस में कंसेंट इस चीज के लिए दे सकती हैं कोर्ट को, या एक पार्टी एप्लीकेशन दे सकती है कोर्ट के सामने और कोर्ट को लगता है कि ये एक सही मामला हो सकता है जहां पर लोक अदालत के थ्रू कोई निर्णय निकल सकता है।
1: जी।
0: या फिर अगर दोनों पार्टीज की भी कंसेंट नहीं है फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि पार्टीज एक्सप्लोर कर सकती हैं और कोर्ट को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके की चीजें हो सकती हैं सुलह समझौता, तो कोर्ट सुओ मोटो भी मैटर को लोक अदालत को रेफर कर सकती है।
1: जी आशीष जी, आज के इस कार्यक्रम में हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दरभंगा बिहार से मोहन पासवान जी। जी मोहन जी।
3: जी जय हिंद मैडम इकट्ठे।
1: जी जय हिंद।
0: जय हिंद मोहन जी।
3: जी मैं जानना चाहता हूँ कि लोक अदालत में आम लोगों के लिए सरकारी वकील का भी व्यवस्था होता है सहायता के लिए?
0: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज होती हैं इनके ट्विन फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि जिन लोगों को एक लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, वकील नहीं मिल पा रहा है, वो उसका कोई भी कारण हो सकता है, मूलतः उसका एक आर्थिक कारण भी होता है और कई वर्गों के लिए हमारे समाज में लीगल एड की अलग से भी प्रोविजन है। ऐसे में सरकारी वकील जिसको कि हम सरकारी वकील कहते हैं वो बेसिकली एक लीगल एड काउंसिल होता है जो कि इम्पैनल्ड होता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज से और वो वकील आपको लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज की तरफ से मार्क किया जाता है। और मेरा ये आकाशवाणी के माध्यम से सबसे अनुरोध है, देखिए किसी भी जब सुलह समझौते से कोई निर्णय निकलता है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति जो सुलह कर रहा है उसको अपने लीगल ऑप्शंस पता होने चाहिए, उसको अपने केस की मेरिट पता होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसका केस कितना स्ट्रांग है या कितना कमजोर है तो वो कभी भी सुलह समझौते की टेबल पर एक मजबूती के साथ नहीं बैठ सकता, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन होना, एक अच्छा कानूनी जानकार होना उस सलाह के लिए लोक अदालत में पार्टिसिपेशन के लिए ये आवश्यक है। और अगर आपके पास ऐसा वकील नहीं है तो आप निसंदेह अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं और लीगल एड काउंसिल्स आपकी मदद करने के लिए वहां आपको जरूर मार्क किए जाएंगे।
1: आशीष जी आइए आप एक और प्रश्न ले लेते हैं थाने से गुरुनाथ जी का। जी गुरुनाथ जी।
4: नमस्कार।
1: नमस्कार।
4: मेरा क्वेश्चन था लैंड के बारे में था, जमीन का विवाद है मेरा, मेरा परिवार के अंदर क्या है वो, तो इसमें मतलब लोग

0: है उसके अनुसार कब लोक अदालत आ रही है या कोई स्पेशल लोक अदालत का गठन किया जा रहा है, इस चीज को आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज आपने बोली कि आपका एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए क्या आपको दूसरी पार्टी के साथ जाना पड़ेगा या खुद भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें अगर आप लोक अदालत में मामला ले जाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी भी एग्री करती है, मैं मान के चलता हूं कि आपने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, तो दोनों पार्टीज अगली डेट पर कोर्ट के सामने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दे सकती हैं। लेकिन अगर अगली पार्टी उस पर एग्री नहीं कर रही है, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दे रही है, तो भी आप अपने वकील से कहकर एक एप्लीकेशन फाइल करा सकते हैं या ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं। और कोर्ट को यदि लगता है कि इसमें एक सुलह समझौते की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, तो वो मैटर लोक अदालत को रेफर कर दिया जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आपको जो इसका लाभ मिलेगा कि अगर ये मैटर लोक अदालत में सेटल होता है, तो एक तो जो बहुत प्रॉपर्टी का मैटर है, सालों साल खिंचते हैं इस देश में, तो उसमें आपको जल्दी उस पर त्वरित रिलीफ मिल सकती है जो कि दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगी। और दूसरी की साथ में साथ जो आपने कोर्ट फी फाइल करी होगी अपने केस को फाइल करने के लिए, और वो कोर्ट फी भी आपको अगर मामला लोक अदालत में सेटल हो जाता है तो वो कोर्ट फी भी आपको वापस हो जाएगी। जी
1: आशीष जी, लेकिन अगर एक पक्ष सपोज कीजिए फैसले से खुश नहीं होता है, तो क्या वो ऊपर की अदालत में अपील कर सकते हैं?
0: देखिए, ये कंफ्यूजन काफी लोगों को रहता है
1: जी।
0: लेकिन लोक अदालत का अगर आप नेचर देखेंगे, वहां जो अवार्ड्स का नेचर होता है वो कंसेंट से होता है। कंसेंट का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज टेबल पर साथ में बैठी, उन्होंने अपने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कोई एक ऐसे ऑप्शन पर पहुंचे जो कि दोनों पार्टीज के लिए एक सहमति का पॉइंट बिंदु बन सकता है। अब अगर दोनों पार्टीज किसी मामले को सेटल करती हैं और उस चीज को लेकर सहमत हैं, तो कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करने के लिए नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम कानूनी रूप से बात करें, तो लोक अदालत के जो अवार्ड होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और ये अपीलेबल नहीं होते हैं। लेकिन एक बहुत ही, जब मैं कहता हूं कि अपीलेबल नहीं होते हैं, तो इसका ये मतलब है, केवल इतना मतलब समझिए कि इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहुत छोटी सी फाइन डिस्टिंक्शन ये भी है कि जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जुडिशियल रिव्यू, अगर लोक अदालत में भी एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जैसे परमानेंट लोक अदालत होती है, वहां पर पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन 1 करोड़ होता है, अगर लोक अदालत ने ही अपना ज्यूरिडिक्शन को ब्रीच किया हुआ है या जो अवार्ड आया है वहां उसमें धोखाधड़ी करके अवार्ड आया है, जैसे एक पार्टी बैठी हुई है उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया या एक क्लेम किया जो कि सही नहीं है, गलत है, और इस तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड को हासिल किया है, तो वो जो सहमति होती है वो मानते हैं कि कंसेंट आपकी विशिएटेड है, और विशिएटेड कंसेंट के आधार पर जो एग्रीमेंट और जो फाइनली लोक अदालत में अवार्ड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में होता है। लोक अदालत के अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है।
1: जी, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से धर्मवीर जी का। जी धर्मवीर जी,
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार,
2: मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार धर्मवीर
2: सर, मेरे दो सवाल हैं छोटे छोटे। जैसे कि अगर कोई 33 साल पहले अगर कोई अपराध करके भाग जाता है और उसके साथी पे मुकदमा चलता है, केस चलता है, वो एक्सपायर हो जाता है, जो भगा हुआ मेन अपराधी है, उसकी खोज खबर निकालने के लिए हमें उसका क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा या कैसे क्या करना पड़ेगा? दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल दहेज के मामले चलते हैं, जो शादी तो नई नई शादियों के बाद तलाक होने की नौबत आती है, तो ये बहुत अच्छा कानून में थोड़ा सा शुरुआत कर दी है कि मीडिएटर की भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही है, क्योंकि पहले तो बहुत खतरनाक केस माने जाते थे दहेज के मामले में, पूरा परिवार अंदर हो जाता था। ये बहुत अच्छा सरकार या कानून ने अच्छा किया कि इसमें बहुत अच्छी तरह से बारीकी जो देख के कुछ काफी हद तक दोनों पार्टियों को, लड़के वालों को ज्यादातर सुविधा मिली है।
0: जी धर्मवीर जी, दोनों सवालों के आप के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि कोई अगर अपराध करके भागा हुआ है और उसका वो उसकी डेथ हो गई है और उसका साथी, मैं मानता हूँ साथी से आपका मतलब को एक्यूज से है, उसको कैसे ढूंढा जाए? तो देखिए, ये लोक अदालत में मैटर आएगा या नहीं आएगा, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था या नहीं था। एक अपराध ये भी हो सकता है कि किसी ने आपके साथ फाइनेंशियल गबन किया हो, आपने आपके पैसे लेकर भाग गया हो, या आपको लेट से एक छोटी मोटी चोट लगी हो जिसको कि कंपाउंडेबल एक हो सकता है न्यायिक प्रणाली को देखते हुए। इस

0: उनके के मामलों में तो आप लोक अदालत को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा गंभीर अपराध घटित हुआ है, ऐसा क्राइम घटित हुआ है जिसको जो कंपाउंड नहीं हो सकता, जो पार्टीज आपस में सेटल नहीं कर सकती हैं, उस अपराध के लिए लोक अदालत सही फोरम नहीं है, और उसके लिए जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं देश की वही अप्रोप्रिएट फोरम होती हैं। और जब कोई भी एक्यूज्ड अगर नहीं मिल रहा है और काफी समय से एब्सकॉन्डिंग है, तो सबसे पहला एक स्टेप होता है उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक डिक्लेयर कराया जाता है, और उसके बाद आप अपने काउंसिल से सलाह लेंगे। तो लॉ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पर देखिए इस चीज की गारंटी तो नहीं होती है कि जो भागा हुआ है वो व्यक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गारंटी इस चीज की होती है कि जो अथॉरिटीज हैं रिस्पॉन्सिबल, क्या वो एक्शन ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। उन अथॉरिटीज को डायरेक्शन दिलवाने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कानून में जिनका कि सहारा आप ले सकते हैं। दूसरा सवाल आपका दहेज उत्पीड़न से, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिएशन इस समय देश में काफी चर्चा में है और सही कारणों से चर्चा में है। लोक अदालत और मीडिएशन में अगर आप बेसिक अंतर समझना चाहें तो लोक अदालत का जो अवार्ड होता है वो अपने आप में कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है और वो इन्फोर्सिबल होता है। मीडिएशन क्या है? मीडिएशन में एक मीडिएटर पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है, और जब अगर पार्टीज के बीच में कोई समझौता हो जाता है, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है, ऑप्शंस एक्सप्लोर होते हैं और कोई समझौता हो जाता है, तो उस मीडिएशन एग्रीमेंट को कोर्ट को भेजा जाता है, कोर्ट फिर उसमें ऑर्डर पास करता है, तब वो डिक्री ऑफ द कोर्ट बनता है। इसी तरीके से मीडिएशन एक बहुत ही प्राइवेट प्रोसेस है, एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जबकि लोक अदालत एक अदालत की तरह एक खुला एक मंच होती है जिसमें कि जो भी वहां पर मौजूद है वो उन चीजों को फैक्ट के बारे में जान सकता है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जहां पर कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग हुआ है, और उन प्रावधानों के दुरुपयोग को देखते हुए ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, उन ऑफेंसेस को कंपाउंडेबल बनाया गया है। अब जहां भी कंपाउंडेबिलिटी की बात आती है फिर लोक अदालत अपने आप में एक सही फोरम बन जाती है। अगर सपोज करिए देखिए एक ट्रिनिटी ऑफ केसेस की बात होती है लीगल फ्रेटर्निटी में, कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, एक डिवोर्स का केस चल रहा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा होता है, और दहेज उत्पीड़न का केस चल रहा होता है, ये तीन केसेस आपस में मिलके चल रहे होते हैं, तो कई बार पार्टीज के पास ये ऑप्शन होता है कि आप लोक अदालतों में जाएं या मीडिएशन में जाएं। मीडिएशन भी कई तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट मीडिएशन भी हो सकता है जो कि गांव समाज के लोग ही आपस में फैमिली मेंबर्स मिलकर बैठकर पार्टीज को समझा सकते हैं, एक एग्रीमेंट साइन हो सकता है और वो फिर सिविल कोर्ट में चला जाता है। दूसरी तरह से कोर्ट एनेक्स मीडिएशन होता है, जहां पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं वहां पर आप पाएंगे आजकल हर एक मैट्रिमोनियल केस को सबसे पहले मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है, पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे मामले जहां पर कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है या गलत इस्तेमाल हुआ है, और वहां पर जहां कॉम्प्रोमाइज करने की पॉसिबिलिटी कानून के द्वारा दी गई है, वहां पर मीडिएशन को या लोक अदालतों के की फोरम को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। जी धर्मपाल जी।
1: आशीष जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुणे से श्रीपद झाकड़े जी। जी श्रीपद जी।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार सर।
0: नमस्कार श्रीपद जी।
2: हाँ, मेरा सवाल यह है कि मैं कि क्या
1: श्रीपद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अगर आपने पीछे रेडियो ऑन किया हुआ है या टीवी ऑन किया हुआ है तो प्लीज।
2: अभी आ रही है
1: जी? हाँ बताइए।
2: हाँ मतलब अभी दृष्टि बाधित है, और मतलब हम लोगों के लिए मतलब किस प्रकार कानूनी सहायता मिल सकती है, मतलब क्या क्या प्रेफरेंस मिल सकता है कानूनी सहायता में?
1: कानूनी सहायता में किस तरह का प्रेफरेंस दिया जा सकता है?
0: देखिए देश में कानूनी सहायता, मैं फिर से ऐसे स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेस टू जस्टिस, न्याय सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, यह आपका कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट है। अब उस राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, उस राइट को सबको अवेलेबल कराने के लिए सरकारों की तरफ से, कोर्ट्स की तरफ से कई तरीके की व्यवस्था की गई है। जब आप बात करते हैं कि आपको किस तरीके से आप अपने राइट्स को, इन राइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन्फोर्स करा सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं, तो हर जो भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस होता है वहां पर अगर आप जाकर बात करेंगे तो एक एलिजिबिलिटी लिस्ट होती है।

0: इस तरीके से समझिए कि अगर कोई देश का कमजोर वर्ग का व्यक्ति है या जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या अदर तरीके से जो डाउनट्रोडन सेक्शन हमारी सोसाइटी का है उसको बिलोंग करता है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो लीगल एड काउंसिल्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है और बहुत सारे प्रोविजंस देश की जो कानून व्यवस्था है उसमें ऐसे किए गए हैं। लेकिन वहां पर जो लोग जो कैपेबल हैं उन कैपेबल लोगों के लिए शायद उतनी आवश्यकता नहीं है स्टेट की तरफ से मदद के लिए, इसलिए एक फिल्टर लगाया जाता है। एक जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है, जो डाउनट्रोडन सेक्शन है उसके लिए लीगल एड की व्यवस्था है। और अब पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इवन तो चूंकि समय के साथ न्याय इतना महंगा हो चुका है देश में कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसके लिए भी लीगल एड के अब प्रोविजंस हो रहे हैं। तो निसंदेह अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सही लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, उसके पीछे सामाजिक कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, तो आप जो कंसर्न लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, अगर आपका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है वहां जाइए, या अगर हाई कोर्ट में है वहां जाइए। आपको मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं और आपको एक सक्षम वकील कोर्ट की तरफ से मार्क किया जाएगा।
1: बिल्कुल, और न्याय वैसे भी एक सामाजिक अवधारणा है और मुझे लगता है कि जब न्याय मिल जाता है किसी को भी तो जनता जो होती है वो अपने आप ही खुश हो जाती है। आशीष जी, एक और प्रश्न ले लेते हैं दिल्ली से संजय जी का। जी संजय जी
2: नमस्कार। मैम
1: नमस्कार।
2: संजय दिल्ली से। मैम मेरा सवाल ये है, ये इतने अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे, छोटे मोटे मामले लोग अदालतों को दे रहे हैं। मेरा मानना है पुलिस वालों को अगर शक्ति दिखाई दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वगैरह कई ऐसे बड़े बड़े फैसले दे करके सरकारों के नियम तौर तरीके बदल देते हैं, तो क्यों ना पुलिस वालों के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग, क्योंकि ज्यादातर
1: जी बीच में ही हमारी कॉल
0: आवाज कट गई, लेकिन जो उनकी मंशा थी पूछने की क्या पुलिस वालों के ऊपर सख्ती दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए। देखिए हर चीज के दो पहलू होते हैं
1: जी।
0: इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा कई सारी अपनी जो लीगल अथॉरिटी है उसको वायलेट करते हुए ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केसेस आते हैं और ये आज की सोशल मीडिया में बहुत ही ज्यादा विजिबल भी होते हैं। लेकिन एक ऑल इनकम्पासिंग या ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसा कि पुलिस वालों पर सख्ती दिखाई जानी चाहिए, तो देखिए पुलिस वाले भी इसी समाज का हिस्सा हैं, वो भी सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं। और विश्वास मानिए, आप जिन पुलिस वालों पर सख्ती दिखाने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता चलता है कि आपके इलाके से थाने को खत्म कर दिया गया है और दूर दूर तक कोई पुलिस वाला नहीं,
1: तो और मुश्किल हो
0: जाए। आप खुद अपने आप को पाएंगे कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो हर चीज के दो पहलू है, जहां पर कानून का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, वो फिर किसी के द्वारा हो, प्राइवेट सिटीजन के द्वारा हो या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा हो, वहां पर कानून को अपना काम करना चाहिए। लेकिन हमें इस चीज को भी समझना चाहिए कि हर पब्लिक ऑफिसर, हर पुलिस वाला भी एक ड्यूटी निभा रहा है। जी
1: जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं रायबरेली से, रमाशंकर जी। जी रमाशंकर जी
3: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: मैं ये पूछना चाहता था कि डिजिटल और साइबर क्राइम, सेक्सुअल क्राइम और रोड एक्सीडेंट के लिए भी लोग अदालतें सक्षम हैं?
0: जी देखिए, तीन तरीके के आपने मुकदमों की बात करी। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक इशू हो सकता है। साइबर क्राइम एक ऐसा भी हो सकता है जहां पर इस कंपाउंड नहीं किया जा सकता है या आपसी सुलह समझौता नहीं हो सकता है, और एक ऐसा भी हो सकता है कि देखिए साइबर अपराधों की जो डेफिनेशन है, अगर आप उसमें पाएंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हुए अगर आपको डिसीव किया गया है, आपके साथ चीटिंग करी गई है, आपको फाइनेंशियल लॉस पहुंचाया गया है, और ऐसा प्रोविजन है कि आप जिस व्यक्ति ने वो अपराध किया है उसके साथ बैठकर मामले को सुलह समझौते से खत्म करना चाहते हैं, वो आपको आपके पैसे लूटे हुए वापस कर देना चाहता है और आप नहीं चाहते कि आगे चीजों को परसू किया जाए, ऐसे कुछ विशेष मामलों में साइबर अपराधों में भी लोक अदालत की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस में आप पाएंगे कि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज, आपने मोटर एक्सीडेंट की बात करी। मोटर एक्सीडेंट भी देखिए दो तरीके से केसेस होते हैं। पहला केस होता है कि अगर आप कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा है और किसी ने एक इंटेंशनली उसको एक्सीडेंट कर दिया या लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए कर दिया, तो

0: एक बहुत ही डिफरेंट केस हो सकता है। लेकिन मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड आप पाएंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पनसेशन क्लेम किया जाता है, जो एक्यूज्ड पर्सन होता है उससे कॉम्पनसेशन की बात हो सकती है। तो ऐसे मामले विशेष रूप से लोक अदालतों में जाते हैं और बहुत ही इसका सक्सेस रेट काफी अच्छा हुआ है। लेकिन इसी पॉइंट पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपको एक अच्छे अगर आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड मामले को लोक अदालत में लेकर जाते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा काउंसिल भी अपने साथ रखना चाहिए जो कि आपको बता सके कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। कई बार कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज की जो नेगोशिएशन की पावर होती है वो एक विक्टिम की नेगोशिएशन पावर से बहुत ज्यादा होती है। लोक अदालत में जो भी आपके अवार्ड आते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो भी आप वहां पर अपने लिए निर्णय लें, जो भी सुलह समझौता करें वो एक इन्फॉर्म्ड सुलह समझौता होना चाहिए, वो एक इग्नोरेंट स्टेज में लिया गया सुलह समझौता नहीं हो सकता है। तीसरा जो इन्होंने एक तीसरे क्लेम की बात करी, इफ यू कैन रिकॉल इट, आपने एक और क्राइम की बात करी थी।
1: लेकिन हमारे पास समय कम है, हम अगले जो है प्रोग्राम में जरूर इसको शामिल करेंगे। लेकिन अंत में चलते चलते हम ये भी जानना चाहेंगे आशीष जी आपसे कि एक नागरिक के रूप में हम कैसे लोक अदालत को सफल बना सकते हैं।
0: देखिए लोग आज की देश आपकी जो आज सिनेरियो है ये इस तरीके का हो गया है कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। पहले देश में एक ऐसा सामाजिक एनवायरनमेंट था कि बहुत सारे जो झगड़े थे वो आपस में परिवार और समाज मिलकर ही सुलह कराकर समाप्त कर देता था। लेकिन एक उसका पहलू ये भी था कि बहुत ऐसी सारी जो घटनाएं जो कि रिपोर्ट होनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव में आगे रिपोर्ट नहीं हो पाती थी। अब आज की डेट में आपके सवाल को आंसर करने के लिए एक सिंपल सा मंत्र ये है कि वो ऐसे सारे डिस्प्यूट्स जिसमें कि आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई गंभीर अपराध नहीं हुआ है, और ऐसा अपराध जहां पर आप आपस में बैठकर चीजों को बात करके शायद एक बेहतर भविष्य के लिए एक ऐसे समझौते की तरफ पहुंच सकते हैं जो कि दोनों पार्टी इसको मंजूर हो। जिस तरीके से पारिवारिक डिस्प्यूट होते हैं, परिवार में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी होते हैं, उन चीजों को देखते हुए आप इन मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं और खुले मन से जाएं, खुली सलाह के साथ जाएं और आपको वहां सफलता मिलेगी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आप कार्यक्रम में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। तो इसके साथ ही फरहत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: আকাশবাণী খবর পড়ছি নিবেদিতা লাহিড়ি। প্রথমে বিশেষ বিশেষ খবর। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম অধিগ্রহণ পর্ষদ আজ সেনাবাহিনীর জন্য 1,10,000 কোটি টাকারও বেশি মূলধনী সরঞ্জাম ক্রয় প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন আঞ্চলিক পরিষদগুলি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নির্বাচন কমিশন আজ পশ্চিমবঙ্গের 2টি, তামিলনাড়ু 2টি, পণ্ডিচেরির 1টি বিধানসভা কেন্দ্র ও আসামের নওগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিশোরী মাতৃত্ব এবং বাল্যবিবাহ রুখতে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। মহালয়ার দিন বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সূচনা হবে এবছরের শারদীয়া দুর্গোৎসবের। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শীতল দেবী বিশ্ব তীরন্দাজি প্যারা সিরিজের মহিলাদের কম্পাউন্ড বিভাগের ফাইনালে পৌঁছে দেশের জন্য পদক সুনিশ্চিত করেছেন। আসছে বিস্তারিত খবরে। প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ পরিষদ বা ডিএসি আজ সশস্ত্র বাহিনীর জন্য 1,10,000 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মূলধনী সরঞ্জাম কেনার প্রস্তাবে ছাড়পত্র দিয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের এক বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য রাসায়নিক, জৈবিক, তেজস্ক্রিয় এবং পরমাণু হামলা মোকাবেলায় ব্যবহৃত রেকি ভেহিকেল, অ্যাডভান্স লাইট হেলিকপ্টার এবং সর্বত্র ব্রিজ সিস্টেম। এদিকে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান, পরিবহন বিমান এবং হেলিকপ্টারের যুদ্ধ ক্ষমতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে মোট অনুমোদিত সরঞ্জামের 98% ভারতীয় শিল্প সংস্থাগুলির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আজ বলেছেন দেশের প্রতিরক্ষা নীতিতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত এখন আত্মনির্ভর এবং আত্মবিশ্বাসী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নতুন দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে শ্রী সিং বলেন 2016 সালে ভারত মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম বা এমটিসির আরির সদস্য হওয়ার পর

0: उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करते हुए वैश्विक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए। नई दिल्ली में फार्मा मैकटेक और लैब नेक्स्ट एक्सपो 2026 के उद्घाटन समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही।
1: ये सुनिश्चित करें कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना हो और हमारी सेवाएं उच्च मानकों वाली हो। न केवल हर भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा मिले, बल्कि हम दुनिया को स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करें। सभी मशीनें और उपकरण भारतीय हो, भारतीय दवाओं और फार्मेसी का इस्तेमाल हो और भारतीय डॉक्टर मरीजों की देखभाल करें।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क से भेंट की। बैठक में भारत और कोष के बीच संबंधों पर चर्चा हुई। इस दौरान कोष के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र को मजबूत करने में भारत की भूमिका की सराहना की गई। ईरान ने आज कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए अस्थायी मार्ग बनाने को लेकर ओमान के साथ उसकी बातचीत अंतिम चरण में है। तेहरान में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने बताया कि समझौते को आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के साथ पंजीकृत किया जा सकता है। प्रवक्ता ने जलमार्ग में असुरक्षा के लिए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र में तनाव जारी रहा तो व्यावसायिक जहाज इस मार्ग पर सुरक्षित महसूस नहीं कर सकेंगे। कल कतर के एक प्रतिनिधिमंडल के ईरान दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यात्रा मध्य पूर्व में तनाव कम करने के कतर के प्रयासों का हिस्सा थी। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रुमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। एक दूसरे हमले में वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें एक चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 3 दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 27 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों और हथियार ले जा रहे लोगों को निशाना बनाया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने आज दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पूर्व और दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में 5 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। ये अभ्यास निर्धारित समय पर हो रहा है, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर हाल ही में सियोल वाशिंगटन के महत्वपूर्ण अभ्यासों को सीमित कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि वार्षिक रक्षात्मक अभ्यास का उद्देश्य समुद्री, हवाई और साइबर क्षेत्रों में 3 देशों की परिचालन और संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। हुती गुट ने सऊदी अरब पर यमन के कई प्रांतों में हवाई और क्रूज मिसाइल हमले करने का आरोप लगाया है। ईरान समर्थित सशस्त्र गुट ने कहा कि सऊदी अरब ने अलजौफ, अलवायदा, मारिब और ताइज प्रांतों में कई हवाई हमलों और क्रूज मिसाइल हमले किए। हुती ने उत्तरी प्रांत अलजौफ के खब व अशफाफ जिले के ऊपर सऊदी अरब के CH-4 टोही ड्रोन को मार गिराया।
1: यमन के सरकारी बलों ने कहा कि उनके लड़ाकू विमानों ने आज दिन में मध्य प्रांत अलबायदा में हूती ठिकानों पर 13 हमले किए। सरकारी बलों ने अलजौफ में भी नया सैन्य अभियान शुरू किया और प्रांतीय राजधानी अल हजम के पूर्व में स्थित हूती नियंत्रण वाले अल लबनात सैन्य अड्डे की ओर बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में पिछले 4 दिनों से जारी भीषण लड़ाई में दोनों पक्षों के कम से कम 117 लड़ाके मारे गए हैं। यमन में वर्ष 2014 के अंत से संघर्ष जारी है। उस समय हूती विद्रोहियों ने राजधानी सना और उत्तरी यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कॉप 31 सम्मेलन से कुछ सप्ताह पहले अजरबैजान की राजधानी बाकू में आज चौथे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सप्ताह की शुरुआत हुई। सरकारी वित्तीय संस्थानों, कंपनियों और जलवायु

0: विशेषज्ञों की ये 5 दिन की बैठक 11 सितंबर तक चलेगी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर $15 का आर्थिक लाभ सृजित कर सकता है। हालांकि रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई में देरी से दुनिया को हर साल 1.5 लाख करोड़ डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर एक साथ मिलकर काम करने से स्वास्थ्य देखभाल खर्च में कमी आएगी, कामगारों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और मौसम की अनिश्चितता से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसके अनुसार साल 2025 में दुनिया भर में करीब 64 लाख लोगों की असामयिक मौत बाहरी वायु प्रदूषण के कारण हुई, जबकि घरों के भीतर होने वाले प्रदूषण से 20 लाख लोगों की जान गई। संयुक्त राष्ट्र का कहना है इस समस्या से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, आधुनिक रसोई ईंधन, बेहतर खेती और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे समाधान पहले से मौजूद हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर साल 2050 तक ऐसे 25 उपायों को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो प्रदूषण से होने वाली 14 करोड़ 40 लाख असमय मौतों को रोका जा सकता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार नेपाल तिब्बत में आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1355 हो गई है। सबसे अधिक मौतें चितवन में 363, उसके बाद नवलपरासी पूर्व में 222, नवलपरासी पश्चिम में 221 और रसुआ में 169 दर्ज की गई है। 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए आज नेपाल में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के विदेश मंत्री जेवियर बैटल के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा कि विश्व वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध। ईरान ने कहा हॉर्मुज जलडब्रू मद से अस्थायी सुरक्षित मार्ग के मुद्दे पर ओमान के साथ वार्ता अंतिम चरण में। और अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में शीतल देवी महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम आर एस रघु विद वर्ल्ड न्यूज। The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar holds bilateral talks with Luxembourg counterpart Xavier Bettel in New Delhi. Says both countries share trusted relationship amid global uncertainties. Iran says talks with Oman on temporary safe passage route through Strait of Hormuz reach final stage. 12 people killed in Israeli strikes in southern Lebanon. Nepal observes National Day of Mourning for flash flood victims. And at World Archery Para Series, Sheetal Devi enters Women's Compound Individual Final in Ahmedabad, assuring a medal for India. External Affairs Minister Dr. S. Jayshankar has said that in an era where the whole world is worried about uncertainty, India and Luxembourg have a trusted relationship. Dr. Jayshankar said this while meeting Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade of Luxembourg, Xavier Bettel, in New Delhi this afternoon. Dr. Jayshankar recalled his visit to Luxembourg in the beginning of this year. The External Affairs Minister said trade, investment, financial cooperation have been the heart of the relationship.
3: It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India. Your visit, along with, I believe, your Minister of Economy, reflects the growing, deepening partnership between us. Ours is a very trusted relationship. It is a relationship we've done a lot, where we have the confidence in being able to do even more. And particularly, I think in terms of supply chain resilience, diversification, and now with the free trade agreement ratification, likely in the coming future,

0: This is the Sanchayata channel of Akashbani Kolkata, broadcasting on 297.6 meters corresponding to 2008 kilohertz. Please stand by for the news to be relayed from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 98% खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी राज्य में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पूर्वी और पश्चिम समर्पित माल ढुलाई गलियारे देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी कल राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया और अब कंप्लीट हुआ।
1: प्रधानमंत्री कल शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की।
3: 8 दशकों की गौरवशाली गोवा पुलिस की सेवा राष्ट्रपति जी के दिए हुए निशान के साथ देश भर की पुलिस की कतार में खड़ी है। ये गौरव जिन जिन राज्यों की पुलिस को मिला वो पुलिस के गौरवशाली इतिहास, साहस, अनुशासन और समर्पण के कारण ही राष्ट्रपति महोदय ने गोवा को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित करने का काम किया है।
1: इससे पहले गृह मंत्री ने आज गोवा के पणजी में पश्चिम क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है

0: कि सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को घरेलू रसोई गैस एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में बड़ी ढील देने का निर्देश दिया है। अब देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ता 25 दिनों के अंतराल पर सिलेंडर बुक करा सकेंगे। श्री गोपी ने कहा कि देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार और बैकलॉग में आई भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये पाबंदी हटाई है। निर्वाचन आयोग ने असम की नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा की है। इसके साथ ही तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की दो दो विधानसभा सीटों और पुदुचेरी की एक सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। आयोग ने बताया कि तमिलनाडु की मदुरंतकम और धर्मपुर सीट, पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटें तथा पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट पर मतदान होगा। मतदान 6 अक्टूबर को और मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सत्य निकेतन इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में नगर निगम के 5 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूरी दिल्ली में 5वीं मंजिल वाली इमारतों को तुरंत सील करने के आदेश दिए हैं। दक्षिण लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई है। कफर रोमाने गांव में एक रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 11 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। कांस्य पदक के मुकाबले में सरिता चीन की वांग हुई तिंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Defence Acquisition Council (DAC) has cleared capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for the defence forces. Our correspondent reports that the approval was taken during a meeting of the council held today under the chairmanship of Defence Minister Rajnath Singh.
2: The council granted approval for the procurement of chemical, biological, radiological and nuclear CBRN Recce vehicles, high mobility vehicles HMV, self-propelled mechanical mine layers MML, advanced light helicopters ALH, trawl tanks and Sarvatra bridge system for the Indian Army. For the Indian Navy, acceptance of necessity was accorded for the procurement of Arudhra radars, design and development and subsequent procurement of marine gas turbines MGT. Arudhra radars will replace the existing air route surveillance radars at various naval air stations, and MGT, a warship propulsion system, will reduce dependency on foreign vendors. Meanwhile, for the Indian Air Force, approval was granted to various proposals to enhance the warfighting capability. Approval was also accorded for procuring ground-based multipurpose jammer and installing Defence Forces Secure Access Card system. The Defence Ministry said 98% of total procurement will be made from the Indian industry. The CBRN Recce vehicles will be capable of detecting, identifying, monitoring and marking of areas contaminated with CBRN agents. The HMVs will enhance operational capabilities, logistic supports and mobility in challenging terrains. With Rishu Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra tomorrow. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. He will also dedicate to the nation 3 important sections of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC, covering 326 route kilometers. Briefing media personnel at Ahmedabad Airport today, Railway Minister Ashwini Vaishnav emphasized that the eastern and western dedicated freight corridors will serve as a crucial backbone for the country's transport and logistics sector. The Prime Minister will also flag off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbargaon and New JNPT Mumbai. The Prime Minister will also lay the foundation stone for 3 railway projects costing more than 9,700 crore rupees.

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ जी यार।